0: समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फराज को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his two-day visit, he will reach Uzbekistan today. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's fourth visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said that during his visit, he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent has the details.
1: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan in the field of defense. A joint working group on defense was established in 2019. India and Uzbekistan regularly participate in joint military exercises, DOSLIC, and the seventh edition of this exercise was conducted in Uzbekistan in April 2020. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.
2: On the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to Bishkek on a two-day visit to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit at the invitation of the President of Kyrgyz Republic, Sadir Japarov. The summit marks the 25th anniversary of the SCO, of which India has been a full member since the year 2017. The death toll from the devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 579, with 1,924 people still missing, according to the data released by the Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority. 579 bodies have been recovered so far, while 101 injured people are undergoing treatment in hospitals. The missing figure of 1,924 includes people from hydropower projects, foreign nationals, civilians and security and government personnel. As many as 933 people from hydroelectric projects are reported missing, while 517 foreign nationals remain unaccounted for. Meanwhile, India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods, as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu last evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar informed this in a social media post that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jaishankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar and prevent artificial tightening of supplies in the domestic market. The results of the UGC National Eligibility Test, NET, for 84 subjects have been announced, with more than 4,000 candidates qualifying for the Junior Research Fellowship. The National Testing Agency, NTA, had ordered fresh examinations for candidates who appeared for the English, Commerce and Sociology papers in June this year, after an expert committee found factual, typographical, translation and language-related errors in the question papers. The re-examinations are scheduled for September 9 and 10, for which candidates will not be required to pay additional fees. India's Velavan Senthilkumar won the PSA Budapest Squash Open title in Hungary after defeating home favourites Bals Farkas 3-0 in the final. He had an impressive run to the title, beating world number 18 and Asian Games gold medalist Yan Wonning 3-0. And that is the end of this news bulletin.
3: Yan Akashwani Tura, Somaida, Doktskung Bazionhan, Simang Dilio Rakapa Hindi, or English Koburkok Nasunamanaha, Yesumanibako Nasimana, Dal Salni, Program Ranko, Abatching Abnaskang, Dalni Nambigbat and Tibibalani Katarangwanatina Sakapana Dang the Kyot Nani Kaman, Plakna Bate Mandira Akumatna Kragapanga, Aruyan. King George ni chanchibi wale yagan gaba katarunga. Dao jol jol na simang na. Dao sal na tarisukun program rangko. Somerang baksa sulsulu yatang china. Prung ni dok chibunga bajiyo na simang. Isol na matilani gitrang kuatani somayo. Ilbertson marako ni dol ni gitrang kukna sunaman gen. Dok kola chibajiyo ha na simang. Hindi lesson program kuatani somayo. Srimati Kangsal di Shirani Tarigapa visiting zoo ba matburung rangko donchakram biapunari anginiani yewa ko knasonaman gen joljo na simang sni bajio ahon dilin wala kapa hindi kobor aro sni bom bajio english kobor ko knangnaman gen sni chkang bajio na simang chasongtal ni gitrang kwata ni somoyo hilbert marak ni gitrang ko knangnaman gen Sni Kolgrak Bajio on, Simang Health Hints Program Kotani Sumayo, Dr. Montu E. Sangmani, Astumani Managanani Goknang Namangin, Joljon Simang Wellborn Marakni, Dokadamani Rangoknang Sunamangin, Sni Kolachi Bajio, Bollywood Melody Program Kotani Sumayo Simang Dungtang Hindi Film Nigi Rangoknang Sunamangin, Chet Bajio Hindi Cover, Chet Chibong Bajio English Cover, Chet Kolachi Bajio Salguru Salamni. Kobrang na simang English kusik chakalan kuk naso naman gen. Chet sopri bajio prangnam tura program. Chet sopri bunga bajio bisarang ni poito mga ni somoyo na simang Hillview High Secondary School lo porengpa chisa amarak ni poito mga ni kuk naso naman gen. Joljo na simang prevelson momeni girang kuk nang naman gen. School bajio Hindi cover, school bajio English cover, school chikang bajio Western music program, school kolaji bajio Vivid Party program, chikang bajio Hindi cover, chikang bajio English cover, chikang bajio chasungutal ni gitrang, chikang kolaji bajio Vivid Party program, chisa bajio Hindi cover, chisa bonga bajio English cover, chisa chikang bajio chasungutal ni gitrang, chisa kolaji bajio Michikang program, kima obu Michikang program kwa tani somoyo, Slmerita and Sangmani Meri Batpang Nikatako Knangan Baksana, Dr. Janula Kimarakni, Rangsan Katongsani Namgijani, Warangko Champingani, Argo Sanabanani Giman Kantigana Gurnasuna Mangin, Joljona Simang Devi Sangmaru Simpumum Nigidango Knangamangin, Chigini Bajio Hindi Gobor, Chigini Wabajio Wiatani Rangna Somekunangin, Chigini Chikung Bajio Boro gitrang kuatani somena simang kuku kukumani basumatari aro tina najarini gitrang kuknang naman gen. Chigini kolachi bajio bebet party program. Chigini supongo bajio bebet party charuka. Sa bajio bebet party hit super hit. Sa kolachi bajio bebet party mancha higit. Gini bajio salinish kobor. Gini chipongo bajio tamini kobor. Gini kolachi bajio bebet party program. Gatam bajio hindi kobor. Gatam bajio english kobor. Yan dal sana tari sukuman program ranga. Dao jol jol dalatumni kiyawabo. Gatam chikung bajio na simang New India samachar ko knang naman gen. Yan daal sana tali sumung program rao nga. Dao zol zol dal atam ni program ko vietang askana. Atam ni dok bajio vietan ni rang na sumay ko nang gen. Dok punga bajio Shillong Station matakapa atchiko barang ko knaso naman gen. Dok chik punga bajio. Blue Church sang maroon ni dol ni isol na mtela ni girang ko knaso naman gen. Dok halachi bajio NEP program mo. Na simang Garu Hills ni ayon mananirang at sakriyan ni bidungo taksingke marangis siya ni kuknaso naman gen. Iyako tarigapa Indrajit Karmakar o nga. Joljo na simang Chibok kitrang ko knang naman gen. Sni bajio na simang Tokyo House program ko tani sumayo sonu nigam nirang kapadang tangtang kitrang ko knang naman gen. Sni kolachi bajio sponsor program. Kuwatani somoy na simang Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ni Kisan Vani ni bak chigini pa ko na simang kanaso naman gen chat pa hindi cover chat pa ba english cover chat kung ba western music program chat kolachi pa sports gen program छेत्री बो बजियो हिंदी खबर स्कूल बजे इंग्लिश खबर स्कूल ची बजियो स्पॉटलाइट प्रोग्राम स्कूल कलाची बजे विविध पार्टी प्रोग्राम छिक बजे हिंदी खबर छिक बो बजे इंग्लिश खबर पंखाम छिक छिक बजे नि छिक कलाची बजे ने सिमांग विविध पार्टी प्रोग्राम को खनना मनगेन यम दाल सलगमुकना तारी तारी सोमन प्रोग्राम रा यन आकाशवाणी टुरा समय दाओ डॉक ची बो बजे हा समय बकना सिमा इलबार्टसन मरक अरनीडोलनी इसोर मिथेरन गिरांग को खनना मनगेन गिट्रांगिंगा क्रिस्टोसन मकराके थांगानी आरो एडेन बारिय गिरांग को खनना मनगेन।

0: na si Ma'am ison tela ni gitang ko tani somayo ilbart son mara ko ni do ni git ko na son na man haru yan niya program ko tani somerang babu na ha yan akashwanin tura somay dao do kalachi ba jiyong ha ya somay ni bako na si Ma'am hindi lesson program ko tani somayo Srimati Kangsal D. Shirani Tarigpa visiting zoo ba matburung rangko don chakram biya ponari ang ini ani yako program yako knaso naman gen yano bakura gpa chatro chatri rangara EV pamadi armarak aro temanchi di shiranga
1: Namaste Guruji.
2: Namaste bachcho. प्यारे बच्चों क्या तुम लोग जंगल के जानवरों को देखना चाहेंगे जी हाँ आप सब लोग देखना चाहेंगे है ना तरह तरह के जानवर और पशु पक्षी हम चिड़ियाखाना में देख सकते हैं चिड़ियाखाना में जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं चलो आज हम चिड़ियाघर के जानवरों के बारे में कुछ सीखते हैं या कहूँगा आज कुछ चिंता क्या खान सिखाते हैं Bisarang, nasimang matpurung rangko nagnas kamaskja. Nasimang nagnas genggen niyang at sancha. Tengtang-tang matpurung rang aro doo mat rangko. Anteng matpurung rangko don ram biyap jekon English chi zu niyagana uno nagna mat gen. Zu o matpurung rangko dal begpa do parang o chpe don na. Hay anteng daalde matpurung rangko chpe don ram zu ni gman maiko ba skir ang na. The early lesson day, Zoo o Dongapa Matpurung Rangni Bimung Rangko Hindi Chi Mai Munga Anting Skir Angna. Mai Naa Zirapko Nakahama Ne Naa Hindi Chi Sengen Chimung Ode Nakyongen Kya Tum Lakar Harnako Deka Nyongen. Mai Nakyongen Bisara
3: Kya Tum Lakar Harnako Deka
2: Hue Uni Gutok Namen Ruwa Nyagangen Chimung Ode इनके गर्दन बहुत लंबा है न्योंगेन मैं क्योंगेन
3: इनके गर्दन बहुत लंबा है
2: होए नेमंग या जिराफ कोरा अफ्रीका सोंगो नकना मतलबमो या मतपुरुंग कुदे नियमन यान अफ्रीका सोंगनी मतपुरुंग ओंगा नेमंग आगन गेंचिम ओदे हिंदी चिन क्योंगेन यह अफ्रीका देश के जानवर है न्योंगेन मैं क्योंगेन
3: यह अफ्रीका देश के जानवर है
2: निमं मच्छा कुदे बाघ निम्बा का नाम मो हिंदी ची उन्हीं के मन यन मच्छा वा न्यान गेन चुम उदे यह बाघ है मैं क्यों गेन
3: यह बाघ है
2: मच्छा रा खानाम गिजक बा मत पुरुंग अबामो उन्हीं के मन यह मच्छा खानाम गिजक बा मत पुरुंग उंगा ने हिंदी ची आकानो दे बाघ एक भयंकर जानवर है अगाना मैं क्या अगन किन
3: बाघ एक भयंकर जानवर है
2: निमाचिं ऊट तो नरी बस खाना मो ऊट को दे ऊट न्यागाना हिंदी ची निमं यन ऊट ओंगा निमं हिंदी ची अगाना ओ दे या ऊट है मैं क्या अगेन
3: या ऊट है
2: Nemu ud kora mai tak bia prongat senak nama nana.
4: Agisi.
2: Oh ya, agisi rang nak nama nama mu. Nemen. Ud ko agisi rang o nak nama na gen sum ode hindi chi. Ud Registan me dek sakte hai. Mai kyon gen?
3: Ud Registan me dek sakte hai.
2: Ud ko hansan agisi rang sa nak nama nama Registan ni urthur maya?
4: Agisi.
2: Agisi. Ud ko agi sini jahas neba mengamamu Ship of the desert niya kanamamu Nigaman Yara agi sini jahas ne menga Nyan gencim ode Ud ko Registan ke jahaj bi kaha jata hai Nyan gen Mek yung gen
3: Ud ko Registan ke jahaj bi kaha jate hai
2: Ya ko Registan ni gamat pune Mek yung gamat gen
3: Registan
2: Registan ni uja niba Registan Megi?
3: Registan.
2: Oi, Registan. Hai, ceng tau de, tu orang ko don ram biapuna regno. Nemna Hindi cia kana ode. Chalo ham chiriyon ko rakhne wala jagah par chalte hain. Megi again?
3: चलो हम चिड़ियों को रखने वाला जगह पर चलते हैं।
2: निम दो देखो दी हिंदी ची मोर बा मयूर नि बागाना ने मैम
3: मोर
2: आरो मंगसरा
3: मयूर
2: मयूर निम यान दो दे वा ने आगन गे छु ओले या मोर है मैं क्यों गे
3: या मोर है
2: माय न आ आगाना मत गेन मा अनसनी असोंनी दोवारा माय ननबा न आसाको बस गे छु ओले हिंदी ची नि क्यों गे क्या तुम बता सकेंगे कि हमारे देश के राष्ट्र पक्षी क्या है न्योंगेन मैं क्योंगेन
3: क्या तुम बता सकेंगे कि हमारे देश के राष्ट्र पक्षी क्या है
2: आंचनी या सोनी चुमता नेशनल बर्तर माइचम
4: दो
2: दे बमो होने के मन आंचनी या सोनी दो बा नेशनल बर्तरा दो दे वा नेनबा आगान गेंचियों उदे हमारे देश के राष्ट्र पक्षी मोर है न्योंगेन मैं क्योंगेन
3: हमारे देश के राष्ट्र पक्षी मोर है
2: तो देर नीठो पद ओ अबमो निगमन तो दे नीठो बेग पद ओ आ ने मगन गेंच में उदे ने क्योंगेन मोर एक सुंदर पक्षी है मैं क्योंगेन
3: मोर एक सुंदर पक्षी है
2: तो ध्यान से ओस्ट्रो दो ना रे बस खगनो ओस्ट्रो दो कोरा हिंदी ची शुतर मुर्गा न्यागना माय माय मंगा
3: शुतर मुर्गा
2: हाय अंचिंग ओस्ट्रो दो को बा नीना रे ना ने मना हिंदी चा गनो दे चलो हम शुतर मुर्गा देखने चलते हैं न्योंगेन मैं के
3: चलो हम शुतर मुर्गा देखने चलते हैं
2: दाउ चंस मंगता है ने शुतर मुर्गा ने बा
4: शुतर
2: शुतर मुर्ग बहुत ही लंबा पक्षी है न्योगेन मैं के
3: शुतर मुर्ग एक बहुत ही लंबा पक्षी है
2: या दुआरा खतना ना मेन थारक पावा न्यान के चुमुदे यह पक्षी बहुत ही तेज दौड़ सकता है न्योंगेन मैं क्योंगेन
3: यह पक्षी बहुत ही तेज दौड़ सकता है
2: मकरे को दे हिंदी ची बंदर निमगा निमन वह मकरे को नीबो ना उदे उस बंदर को देखो न्योंगेन मैं क्योंगेन
3: उस बंदर को देखो
2: वा मकरे दे बादाम चाइंगा निम्बा आगाना उदे मैंने बादाम को दे हिंदी ची मूंगफली निम्गा ने उन्हीं के मन वा मकरे दे बादाम चाइंगा ना उदे वा वा बंदर तो मूंगफली खा रहा है न्योंगेन मैं क्योंगेन
3: वा बंदर तो मूंगफली खा रहा है
2: निम्न वा चीनी गुरे बा हिप्पोपोटामस को नीबो ना उदे हिप्पोपोटामस करा करियात न्यागाना बा दरियाई घोड़ा निम्न वह चीनी गुरे बा हिप्पोपोटामस को नीबो ना उदे वह दरियाई घोड़ा यानी करियात को देखो न्योंगेन
3: वह दरियाई घोड़ा यानी दरियात को देखो
2: दरियात उनसे ने करियात
3: करियात
2: करियात को देखो करियात
3: करियात को देखो
2: है वह दे चियो ज्रोवे रोएगा नियन बागन दे मैंने ज्रोवा को हिंदी ची तैरना न्यागना निमन चियो ड्रोइंगा ना उन्हें वह तो पानी में तैर रहा है न्योंगे ने मैं क्योंगे
3: वह तो पानी में तैर रहा है
2: निमन ना आजू ओ गुंडू मोंगमा सिंहो मच्छोक और फेरू को नकाहमा निमन सुना उन्हें निम्योंगे क्या तुम चिड़ियाघर में गैंडा हाथी सिंह हरिन और लोमड़ी को देखा न्योंगे ने मैं क्योंगे
3: क्या तुम चिड़ियाघर में गैंडा हाथी सिंह हरिन और लोमड़ी को देखा
2: हो ये नहीं क्यों गेन ये मैं हुए चंगा यारंग प्लाकोन ने कहा ने बा आगन सका उन्हें जी हाँ हमने ये सब देखा ने गेन मैं क्यों गेन
3: जी हाँ हमने ये सब देखा
2: आज सुन दो दे आज अच्छे ना सुन मैं कबड़े यानी को मन रखा हम आज सुन या जूजी जूओ दोंगों पर मत पुरुंग रहने के मन इस खेर आंगा हाँ दादियाँ जेको ना सुन सिखिर आज मानी के मना सुन सका कनोक ने अच्छा ईवी फामा दे ना आगन बुने जिराफ कोरा हिंदी ची मैं मगाचन लकर हरना मो ने मंग माइन आज जिराफ को नकहमा ने सुन ओदे बादने आगन गेन
4: क्या तुम लकर हरना को देखा
2: हो ए ने मंग थेमन ची ना आगन बो उनी गतोक ना मेन रुआ नो दे बादने आगन गेन
4: उसके गर्दन बहुत लंबा है
2: इनके गर्दन बहुत लंबा है तो इवी फमादे नास का वो यन अफ्रीका सोनी मत पुरुं वहाँ नो दे बादने होंगे
4: या अफ्रीका देश के जानवर है
2: दे दो दे थे मन चीन आवाज का वो मत्सा करो हिंदी ची मैं मत्सन
4: बाग
2: है बाग निगमन या यन मत्सा वहाँ नो दे बादने होंगे हिंदी ची
4: या बाग है
2: इवे फामा दे नगांस खाबो मच्छा खानाम गिजाक पा मत पुरुंग वा नोरे बाजे उगेन
4: बाघ एक बहुत ही भयंकर जानवर है
2: निम थेमेंची नगांस खाबो ऊत को आगे सिरांगो नकना मना नोरे बाजे उगेन
4: ऊत को हम रेगिस्तान में देख सकते हैं
2: निम इवे फामा दे नगांस खाबो ने ऊद को आगे सीनी जहाज नेबा मंगा मतलब बाद में उगेन
4: ऊद को रेगिस्तान के जहाज भी कह जाते हैं
2: ने मंगाए दाव दे दो रंग को दोन राम बियापुना रेगनोक ने मंग आ हिंदी चाकनों दे बाद में आन गेन ते मंची
4: चलो हम चिड़िया घर
2: चिड़ियों
4: को रखने वाला जगह पर चलते हैं
2: ने मंग इवी पामा दे अच्छा दो देख रहा मैं मगाचम हिंदी चिरा
4: मोर
2: मोर आरा मंगसारा
4: मयूर
2: मयूर यान दो दे वानो ना बाद ध्यान गेन
4: या मोर है
2: या मोर है चंस पे ते मंचिन असाखो बस

0: Nasi mam casung tani kasih kita angkuk naso nama mana hari ini ni program kita ni somerang bapa nasi ha deg deg sana jam mana seni baju orang nak simang dalam kata kepala hindi kubur arus seni bawa baju ni cukup kok nang aman gen yan Akashwani Tura.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग अब भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्यों के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी वे भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें अभी भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his two-day visit, he will reach Uzbekistan today. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's fourth visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said that during his visit he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent has the details.
4: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan in the field of defense. A joint working group on defense was established in 2019. India and Uzbekistan regularly participate in joint military exercises, Dostlik, and the seventh edition of this exercise was conducted in Uzbekistan in April 2020. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.
3: On the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to Bishkek on a two-day visit to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization, SCO Summit, at the invitation of the President of Kyrgyz Republic, Sadur Japarov. The summit marks the 25th anniversary of the SCO, of which India has been a full member since 2017. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 579, with 1,924 people still missing, according to the date released by the Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority. 579 bodies have been recovered so far, while 101 injured people are undergoing treatment in hospitals. The missing figure of 1,924 includes people from hydropower projects, foreign nationals, civilians and security and government personnel. As many as 933 people from hydroelectric projects are reported missing, while 517 foreign nationals remain unaccounted for. Meanwhile, India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed from Kathmandu last evening. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed in a social media post that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. Finance Minister Nirmala Sitharaman arrived in the US for a six-day visit, during which she will participate in the G20 Finance Ministers meeting and hold talks with CEOs and business leaders to discuss investment opportunities. Sitharaman reached at Chicago's O'Hare International Airport on Thursday, following a three-day visit to Canada, where she took part in the inaugural India-Canada Economic and Financial Dialogue. The results of the UGC National Eligibility Test NET for 84 subjects have been announced, with more than 4,000 candidates qualifying for the Junior Research Fellowship. The National Testing Agency had ordered fresh examinations for candidates who appeared for the English, Commerce and Sociology papers in June this year after an expert committee found factual, typographical, translation and language-related errors in the question papers. The re-examinations are scheduled for 9th and 10th of September, for which candidates will not be required to pay an additional fee. The IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Odisha during next 2 to 3 days. Heavy rainfall is also likely to prevail over Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and northeastern parts of the country till tomorrow. India's Vilavan Senthilkumar won the PSA Budapest Squash Open title in Hungary after defeating home favourite Bulaj Farkas in the final. And that is the end of this news bulletin.
0: Yan Akashwani Tura, Soma Daos Nibajimins Kohan, Simang Dilwada Kapa Hindi, or English Kobrangogna Solomanaha, Yasoman Bakona Simans, Sasontani Gitankotani Somayo, Hilbert Marakni Gitrankok Nangamangin, Gitronga, Uang Tami, Aro Dakchak Bongo, Gitankok Nasolomangin.

0: na simang sensor filmoni lata magish ka nirang kapa mede dalme tu nazar me tu yagit ko kena so na manaha nga o dektek sani jab na simang tezi filmoni sudah lata bata charge bata charge yani rang kapa na shikwa hota yagit ko kena naman gyan.
1: आज से ही सॉल्ट फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डालें। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अयो यम स्थिरंग दे थोना खाई जो दालियो कई चामन गिनो
3: बाबा यन तक बच्चा निरंग ने नंग नंदी नमजावा ना दी चिकपा चा निरंग खोदी दोन थोंग ना सा नंग जोपा
2: ना जोप दों ना माइको मसिया अंग खुजुक चा ना स्कारंग को चा ना मन ना दिपत अंग चाइ गिन बा अंतंग नी चा ना स्कार को चुसो को ना मन ना नंग को ना विजमा
3: अम्बा ना चापरे दिमंग जामानो ना चा जोको दे नंग ने बेनी नम गिनी ना सा गानी गा बा मतुम चिकपा आरो खारी नंग थोत कपा चा निरंग को वात पोहा नंग ने बेनी नम गिनी ना नम मा चा अनि मेशु समजा करंग को सा छा बोहा
2: याको कमिश्नरेट ऑफ फूड सेफ्टी मेघालय शिलोंग निकता उया

0: 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स,
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
4: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
4: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है, 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ 30 विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
7: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
4: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 99682-91988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 977-98513-16807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
9: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 1,00,000 टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45,00,000 टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
10: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
0: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
11: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, IT शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
4: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today to enhance economic and defense cooperation. India signs deal with United States to procure Javelin anti-tank guided missile systems. Death toll in Nepal flash floods rises to 579, while 1,924 people still missing. India steps up humanitarian assistance to the neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India's Vilavan Senthil Kumar wins PSA Budapest Swash Open title, beating Balázs Farkas of Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his two-day visit, he will reach Uzbekistan. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's fourth visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said, during his visit, he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent has the details.
13: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan in the field of defense. A joint working group on defense was established in 2019. India and Uzbekistan regularly participate in joint military exercises, DOSLIC, and the seventh edition of this exercise was conducted in Uzbekistan in April 2026. In view of this, the visit of PM Modi becomes very important and is expected to lay the foundation for further cementing strategic and business partnership between both countries. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.
12: On the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to Bishkek on a two-day visit to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit at the invitation of the President of Kyrgyz Republic, Sadur Japarov. The summit marks the 25th anniversary of the SCO, of which India has been a full member since 2017. In a special conversation with Akashwani News, India's ambassador to Uzbekistan, Smita Pant, said the relations between the two countries are strengthening rapidly, and during the Prime Minister's visit, there will be discussion on increasing cooperation in all areas. She said the business between two countries has increased manifold in last few years, and during the Prime Minister's visit, both countries will discuss to improve connectivity and reduce the bottlenecks.
6: Despite connectivity bottlenecks, India or Uzbekistan natural markets hain. Hum zyada niryat kar sakte hain. Hum equipment, machinery, textile machinery, chemical, dyes, surgical equipments, usko hum export kar sakte hain. Hum unse zyada import bhi kar sakte hain. Because ye resource rich nation hai. Stumbling block jo hai, wo hai connectivity. To isko leke dono leaders baat karenge, dekhenge ki kya kiya ja sakta hai.
12: India has signed a deal with the US for the acquisition of Javelin anti-tank guided missile systems for the Indian Army. This marks India's formal entry as a customer of the famed shoulder-fired weapon, even as both countries work towards its eventual joint production in India. The US Embassy and consulates in India, in a statement yesterday, said the Indian Army had signed a letter of offer and acceptance for the purchase of the Javelin. The embassy also said that the United States welcomes the Indian Army's signing of a letter of offer and acceptance for the purchase of the Javelin. U.S. Ambassador to India Sergio Gore said the agreement demonstrated the depth of American support for the Indian Army and created new opportunities for our defense industries to work together. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 579, with 1,924 people still missing. According to the data released by the Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority, 579 bodies have been recovered so far, while 101 injured people are undergoing treatment in hospitals. The missing figure of 1,924 includes people from hydropower projects, foreign nationals, civilians and security and government personnel. As many as 933 people from hydroelectric projects are reported missing, while 517 foreign nationals remain unaccounted for. Meanwhile, India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods. As the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu last evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday told the media that India is supporting Nepal in the ongoing relief and rescue efforts.
14: They told me about exactly what happened to them, how the floods came, and they were very thankful, particularly to the Nepal Army, which made this great effort to get them out of that very difficult place where they were. So right now, our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people. Even spoke to the Nepal Foreign Minister. We have given them a range of support offers.
12: The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow at 11 a.m. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. This is Akashwani giving you the news.
8: Stay in the know wherever you are. Follow us on X and Threads at AIR News Alerts.
12: The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar and prevent artificial tightening of supplies in the domestic market. The government has been closely monitoring sugar prices, stocks and movement across the country. It has decided to introduce a fortnightly sugar allocation

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के समय सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन के अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और उत्कृष्टता की भावना भारत की इस खेल संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती खेल व्यवस्था हर स्तर पर प्रतिभाओं के पोषण की प्रतिबद्धता दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। भारत के वेलवेन सेंथिल कुमार ने पीएसएलए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। वहीं दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his two-day visit, he will reach Uzbekistan today. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's fourth visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said that during his visit, he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent brings us the details.
1: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan in the field of defense. A joint working group on defense was established in 2019. India and Uzbekistan regularly participate in joint military exercises, Dostlik, and the seventh edition of this exercise was conducted in Uzbekistan in April 2026. In view of this, the visit of PM Modi becomes very important and is expected to lay the foundation for further cementing strategic and business partnership between both countries. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Tashkent.
2: On the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to Bishkek on a two-day visit to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit at the invitation of the President of Kyrgyz Republic, Sadir Japarov. The summit marks the 25th anniversary of the SCO, of which India has been a full member since 2017. India has signed a deal with the US for the acquisition of Javelin anti-tank guided missile systems for the Indian Army. This marks India's formal entry as a customer of the famed shoulder-fired weapon, even as both countries work towards its eventual joint production in India. The US Embassy and consulates in India, in a statement yesterday, said that the Indian Army had signed a letter of offer and acceptance for the purchase of the Javelin. U.S. Ambassador to India, Sergey Gore, said the agreement demonstrated the depth of American support for the Indian Army and created new opportunities for our defense industries to work together. The death toll from the devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 579, with 1,924 people still missing, according to the data released by the Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority. 579 bodies have been recovered so far, while 101 injured people are undergoing treatment in hospitals. The missing figure of 1,924 includes people from hydropower projects, foreign nationals, civilians and security and government personnel. As many as 933 people from hydroelectric projects are reported missing, while 517 foreign nationals remain unaccounted for. Meanwhile, India has stepped up humanitarian assistance to Nepal, affected by

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह,

0: दोस्तों आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम तो बहुत छोटा ही है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत समझना।
2: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह अच्छा शेर है, बैठो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है, दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम फिर कड़ी नजर रखे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं टूट जाऊंगा।
3: लीना, कि अब भी मैं लेके कहा था, तू कहा थी अब तक
1: घर पर ही थी और कहा थी
2: नेमला को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अरे अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उनकी गाड़ी में आई है, मुझे अकल मत सिखाओ।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
3: अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे है, मुझे लड़ोगे?
1: आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
2: हाँ हाँ।

सुलक्षणा चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

मन का मीत की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मीत को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम जोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे एक बोझ सा था, वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?

0: जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम टाइप के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने वाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो नहीं आप बोलिए ना, ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। उस जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर और मस्ती मजाक भी करते थे, वो मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है, ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुट ही बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग, तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में।

सन 1971 में हास्य अभिनेता महमूद की फिल्म आई मैं सुंदर हूँ। इस फिल्म के जरिए लीना ने अपने चाहने वालों से कहा,

ये सन 1973 में आई फिल्म अनहोनी का गीत था। इसके बाद लीना की एक बड़ी शानदार फिल्म आई मनचली।

मंचली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

0: सन 1974 में विदाई फिल्म के साथ ही लीना चंदावरकर ने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ वांदोडकर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूर होकर लीना चंदावरकर को दोबारा फिल्मी दुनिया में आना पड़ा।
1: तो जिंदगी है कभी खुशी है कभी।

0: खुशी है कभी गम।
1: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
2: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा के मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वह उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगुनविस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वह ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के समय सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 1924 लोग लापता हैं। लापता लोगों में पनबिजली परियोजना से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंकरोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमरीकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन मिसाइल की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वो G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और उत्कृष्टता की भावना भारत की खेल संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती खेल व्यवस्था हर स्तर पर प्रतिभागियों के पोषण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi has left for his four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic this morning. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. The Prime Minister said that he's looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, on further deepening cooperation in trade and investment, digital connectivity, defence, energy, and on advancing the shared visions of Vikasit Bharat and Yangay, Uzbekistan. The Prime Minister said that at the invitation of President of Kyrgyz Republic, Sadir Zaparov, he will travel to Bishkek to participate in the 26th SCO summit. Mr. Modi said that he is looking forward to advancing India's vision for the region, anchored in security, connectivity and opportunity, and to working with fellow members for a region free from the scourge of terrorism, separatism and extremism, which continue to threaten peace and stability in neighbourhood and beyond. India has signed a deal with the US for the acquisition of Javelin anti-tank guided missile systems for the Indian Army. This marks India's formal entry as a customer of the famed shoulder-fired weapon, even as both countries work together at its eventual joint production in India. The US Embassy and Consulates in India in a statement yesterday said that the Indian Army had signed a letter of offer and acceptance for the purchase of the Javelin. US Ambassador to India, Sergey Gore, said the agreement demonstrated the depth of American support for the Indian Army and created new opportunities for our defense industries to work together. The death toll from the devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 579, with 1,924 people still missing, according to the data released by the Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority. 579 bodies have been recovered so far, while 101 injured people are undergoing treatment in hospitals. The missing figure of 1,924 includes people from hydropower projects, foreign nationals, civilians and security and government personnel. Meanwhile, India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu last evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday told media that India is supporting Nepal in ongoing relief and rescue efforts. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. The National Testing Agency, NTA, has declared the results of the UGC NET June 2026 examination for 84 subjects. More than 4,000 candidates have qualified for the Junior Research Fellowship. The compressed natural gas CNG price has been hiked by 3.89 rupees per kilogram in Delhi NCR. With today's price hike, CNG in the national capital now costs 86.98 rupees per kilogram. The revised CNG prices have come into effect from 6 a.m. today. Indraprastha Gas Limited, IGL, has said that even after this revision, the CNG retail price in Delhi continues to be amongst the most economical options for consumers. India's Velavan Senthil Kumar won the PSA Budapest Squash Open title in Hungary after defeating home favourite Bals Farkas 3-0 in the final. He had an impressive run to the title, beating world number 18 and Asian Games gold medalist Yan Yung Ning 3-0 in the quarterfinals before overcoming

यमुना की सांवली लहरों पर ढेरों रंगीन नावों के बीच हंसनी जैसी एक सफेद नाव तैर रही थी। उस छोर के मंदिर में कोई गा रहा था। लग रहा था जैसे वो आवाज भजन के वो सुर लहरों में घुलते जा रहे हों, या इन नावों की गति बनकर पानी की सतह पर हौले हौले सरक रहे हों। मैं हैरान रह गई। सुकरात, अब से बस कुछ पल पहले भी मैं यही थी, इसी जगह पर, लेकिन तब नदी के पास बिखरा ये सारा जादू मुझे छू भी नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तुम जी कहां रही थी? मैं हंसने लगी। नहीं महाशय, जी तो रही थी पर इस जादू को नहीं, अपने गुस्से को। हाँ, उसने कहा और मैंने स्कूटी स्टार्ट कर ली। वैसे एक बात कहूं सुकरात, इंतजार करना बड़ी चुभने वाली सजा है। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो और सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो, वो बोला। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते, बस उसे किसी के आने तक खर्च कर रहे होते हैं। हमारी नजर सिर्फ घड़ी की सुइयों पर होती है। अगर वो नजर सुइयों से हट जाए तो शायद इंतजार भी एक हिस्सा बन जाए जीने का। हवा अब मेरे बालों को पीछे की तरफ ढकेल रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या कर रहे हैं हम? वक्त खर्च कर रहे हैं या फिर जी रहे हैं? अब हम वक्त को साथ लेकर चल रहे हैं सिया, बिना किसी सुई की फिक्र किए। उसने अपना नया कैमरा सहेज कर कंधे पर टांगा और स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो मेरे बालों को उलझा नहीं रही थी, बल्कि ढलती हुई धूप की नमी को छूकर गुजर रही थी। स्कूटी आगे बढ़ गई, मगर पीछे दरिया के किनारे उस पथरीली बेंच पर धूप और गुस्से की वो दोपहर वहीं छूट गई थी। हम दोनों उस बहते हुए पानी से दूर जा रहे थे, लेकिन मेरे भीतर उस क्लिक की गूंज और उसकी आंखों का वो मध्यम सा ठहराव अभी तक साथ साथ चल रहा था, जैसे वक्त की किसी मुकम्मल किताब में हमारा ये लम्हा हमेशा के लिए दर्ज हो गया हो।

अस्त से पहले के सिंदूरी रंग में लिपटा वो पूरा आलम पीछे छूटने लगा। एक दूसरे के पास पास खड़े सटकर बतियाते से लगते उन पुराने मंदिरों के रंगीन झुंड, घाट पर आंख बंद किए बैठे वो लोग, उंगलियों में फिरती हुई वो सुमरनिया, वो हंस गति से थिरकती हुई नावें, वो सांवला पानी, सब कुछ। जैसे ही स्कूटी मुड़ी, यमुना का नजारा नजरों से ओझल होने लगा, मानो उसी नम रोएदार सिंदूरी रंग ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। हम दोनों चुप थे और हमारी उस गुनगुनी खामोशी में केवल स्कूटी के पहियों का संगीत बज रहा था। उसने पूछा, पर हम कॉफी हाउस क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की कॉफी बहुत बढ़िया होती है और वहाँ एक अदद डिस्चार्ज फोन को चार्ज भी किया जा सकता है। मालूम है तुमने ऐसे अर्जेंट नोटिस पर बुलाया कि लगा पता नहीं क्या मसला है, तो देखो फोन तक चार्ज नहीं कर पाई। हाँ तो उसमें क्या, कोस तो लिया ना मुझे पूरे आधे घंटे। तुमको कैसे पता मैंने तुम्हें कोसा? जवाब में वो मुस्कुरा दिया। कुछ ही पलों बाद कॉफी हाउस में हम कॉर्नर की टेबल पर जा बैठे। मैं जैसे ही बैग से अपना चार्जर निकालने लगी, उसने झट से छीन कर अपने बैग के हवाले कर दिया। अरे ये क्या, फोन डिस्चार्ज है मेरा, वो हंस दिया। मालूम है तो दो ना, उसने कहा। नहीं। अरे क्यों नहीं, जवाब में उसने मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर एक और फोटो खींची और बोला, बस नहीं दूंगा अभी तो, कम से कम नहीं। मैं सोचने लगी कि ये बंदा भी ना मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला, कभी एकदम से सुकरात टाइप व्यवहार करता है और कभी एकदम सलमान टाइप।

साल भर से जानती हूँ इसे, कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हैं हम, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस बंदे को कभी नहीं जान पाऊंगी। खैर, चार्जर हासिल करने के लिए मैंने एक और कोशिश की, इस बार रिक्वेस्ट वाले मोड में। दे दो भाई प्लीज। क्यों, मैंने झुंझलाकर कहा, क्या बचपना है ये, अब ये भी कोई सवाल हुआ क्यों? अरे कोई जरूरी मैसेज हुआ तो? क्या जरूरी मैसेज हुआ तो? अरे अगर कुछ घंटे गैजेट से दूर रहोगी तो पिछड़ी हुई नहीं कहलाओगी। इंटरनेट नाम का ये समंदर क्या हाथ लग गया, हम सही गलत, झूठ सच, असली नकली, सब कुछ डाइजेस्ट करने लग गए हैं। जानती हो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैंने पलट कर पूछा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग गैजेट्स को गैजेट्स की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। असहज हो जाते हैं हम उनके बिना, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, पर जब कोई पास में हो तो उसके होने को, उसके साथ के उन गुनगुने पलों को हम महसूस ही नहीं कर पाते। और जिंदगी के जादू से भरे कितने ही पलों को यूं ही बीत जाने देते हैं, यूं ही माने अनदेखा। मैंने थोड़ी पर हाथ रखकर उसे घूरा। अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे गैजेट्स का एडिक्शन है, मुझे लत है इनकी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकती, है ना? नहीं, वो मुस्कुराया, फिर वही बुद्ध मुस्कान। मुझे बस ये लगता है कि ये कुछ पल तुम इन गैजेट्स के साथ नहीं, मेरे साथ जियो। मैंने चिढ़कर लापरवाही से कहा, क्यों, कुछ पलों बाद तुम मरने वाले हो क्या? नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि मरने से बड़ा सवाल ये है कि हम जी रहे हैं या नहीं? जानती हो सिया, मैं कई बार सच में ये सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े, तुम्हारा तो पता नहीं, पर इस वक्त तुम ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे हो और ना ही पीछे। वो हंस दिया, धीमी सहज हंसी। अच्छा अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने इस प्याला भर कॉफी को जिया या नहीं? बिल्कुल जिया, घूंट घूंट जिया, मैंने कहा, और कॉफी हाउस में बज रहे गीत को संग संग गुनगुनाने लगी।

मैं हैरान थी। पता नहीं क्या हो गया था इस सुकरात को आज, कैसी पहेलियां सी बुझा रहा था। एक तो वहाँ बंदरों के बीच बैठकर गुस्से में उबलने से पहले ही मेरा दिमाग सेंटर से थोड़ा सरक गया था। उस पर ये दार्शनिक उसे पूरी तरह अपनी जगह से बेदखल करने पर उतारू था। मैं बोली, देखो वैसे भी तुम अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हो, पर आज तो विशेष तौर पर पल्ले नहीं पड़ रहे हो। वो हंस पड़ा, तो जरूरत क्या है, मत समझो तुम ना, बस कुछ पल के लिए अपनी ये सारी समझदारियां किसी पोटली में बांधकर कहीं दूर पटक दो और अभी बस जियो। और सुनो, एक एक पल को जीना। फिर बोला, अच्छा जरा उधर तो देखो। अरे पीछे नहीं, आगे देखो। हम जहाँ बैठे थे वहाँ सामने एक बड़ा सा आईना था। उस आईने में हम थे, माने हमारे प्रतिबिंब। उसने कहा, देख रही हो, ये वर्तमान है, वो पल जिसमें हम तुम हैं। ये पल हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा सिया, लेकिन जानती हो, डूब कर जिया।

इन बातों से जाने क्यों मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा, हे सुकरात, हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? उसने मेरा सवाल मुझ पर ही थोप दिया, ऐसे जैसे मैंने कोई बड़ा भारी इल्जाम लगा दिया हो, वो भी झूठा। वो बोला, फोन की वजह से परेशान तुम हो और पूछ मुझसे रही हो कि हो क्या गया है मुझे। मैंने भी कहा, मेरा चार्जर छीनकर खुद जाने क्या जिद लगाए पड़े हो और कह मुझसे रहे हो कि क्या हो गया है मुझे। इस बीच उसने लगातार कई क्लिक कर डाले। ये क्या किए जा रहे हो? गॉड पार्टिकल का परीक्षण कर रहा हूँ। अरे यार, कैमरे से फोटो ही खींचूंगा ना, ऐसे नासमझ सवालों की तुमसे उम्मीद नहीं करता मैं। मैंने भी कहा, लेकिन मैं तो तुमसे ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतों की उम्मीद करती हूँ। क्या करूं, और कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट वाले मोड में आई। अरे यार, क्यों सता रहे हो, लौटा भी दो मेरा चार्जर। अच्छा बाबा, ये लो। उसने चार्जर निकाल कर मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन मैं जैसे ही लेने को बढ़ी, झट से वापस बैग में ठूंस लिया। नहीं, अभी नहीं। वो लगातार बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था। मेरी घूरती हुई आंखों में देखते हुए धीमे से बोला, प्लीज लो। फिर वही मारक मंत्र। चिर को साइड में रख कर मैं मुस्कुरा दी। ये क्या सस्पेंस लगा रखा है सुकरात? उसने पूछा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा ये सस्पेंस? उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी। बोला, चलो बैठो। बैठोगी ना? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मैंने कहा, अच्छा भाई, इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने कहा, क्या? पर क्यों? वो बोला, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिंदगी को हर बार प्लान बनाकर दौड़ाया जाए। सिया, कई बार जिंदगी के सबसे अच्छे पल वो होते हैं जिनकी आहट हम सुन नहीं पाते, जो दिखाई ना दे। कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं महसूस करने के लिए। उसने एक गहरी सांस ली। महसूस करो सिया, सांसों में घुलती ये हवा, आंखों में ठहरी ये शाम, और मेरे पास बैठी हुई ये तुम। मैंने कहा, तुम तो सच में बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। उसने चहक कर कहा, मैं चाहता हूँ कुछ पल के लिए तुम भी बच्ची बन जाओ। नहीं भाई, मुझे तो माफी करो तुम, पहले ही इतनी मुश्किल से तो बड़ी हुई हूँ डांट खा खा कर, अब इतिहास नहीं दोहराना चाहती। इस बात पर दोनों एक साथ

शहर की परिधि से दूर उस हरे जंगल में धंसते हुए हम वहां चले जा रहे थे जहां ढलती शाम के बावजूद धरती का धानी रंग गहराया नहीं था। उसने कदम के घने पेड़ों के बीच ले जाकर स्कूटी रोक दी, जहां और भी बहुत सारे पर्यटकों ने अपनी स्कूटी अपनी गाड़ियां पार्क की हुई थी और ढेर सारी फोटो ली और बोला, इन पेड़ों को गौर से देखो सिया, जिनके बीच से होकर हम गुजर रहे हैं। पहियों के इस संगीत को सुनो जो हमारी रफ्तार के संग लय बदलते हुए बज रहा है। इन लोगों को, इन नजारों को, इन आंखों को, इन मुस्कानों को, इन उदासियों को, हर चीज को जी लो, जी लो, क्योंकि हर लम्हा बीत रहा है, कभी ना लौटने के लिए बीत रहा है। मिट्टी, खेत, धुआं और मूंगे जैसे रंग में खोया हुआ ये पूरा आलम, हम दोनों वहीं बैठ गए। लग रहा था जैसे धरती हरे रंग में घुल गई हो। कहने को आसपास और भी बहुत सारे लोग थे, पर उस ढलती शाम में साथ की धूप को इस तरह जीने वाले शायद हम ही थे। सुकरात धीमे से बोला, तो कैसा लगा? मैंने सामने देखा, जैसे न नीचे धरती हो न ऊपर आकाश, जैसे मैं, जैसे हम उस सांवलाती हुई सूरज की नारंगी रेखा में समा गए थे। मैंने कहा, जो दिखाई ना दे, कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है महसूस करने के लिए। वो मुस्कुराया, तो ये लो अपना चार्जर। साथ में स्कूटी की चाबी भी थी और उसका वो ड्रीम पीस, वो नया चमकता हुआ कैमरा, जिसके लिए कुछ ही घंटे पहले उसने शहर की कितनी ही दुकानें छानी थी, वो अब उसके गले में नहीं बल्कि सामने पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर रखा था। एक मिनट, तुम होश में तो हो? हे सुकरात, अपना नया कैमरा तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो? मुझे गाढ़ी हैरत में डाल वो दो घड़ी बस मुस्कुराता रहा, फिर बहुत हौले से बोला, यहाँ नहीं सिया, तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। जिंदगी का असली जादू मुट्ठी से फिसल कर जा रहे इस लम्हे में है सिया, मैं तो बस उसी लम्हे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये कैमरा अब तुम्हारा हुआ, ये तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि जिंदगी के अदृश्य लेंस में हमारी हर सांस कैद हो रही है, इसलिए मुस्कुराती रहना सिया, और कभी कभी अपने लिए इस भागती दुनिया से ऐसे ठहरे हुए लम्हों को चुराती रहना। वो मुड़ा और धीमे कदमों से चलता हुआ लोगों की भीड़ में आंखों से ओझल होता गया। सिया के सामने कैमरा रखा था, हाथ में चार्जर और स्कूटी की चाबी। उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक लंबी गहरी मुस्कान। वो हौले से बुदबुदाई, कैमरे की जरूरत उसे थी, दुनिया को कैद करने के लिए लेंस वो ढूंढ रहा था, पर सच पूछो तो वो मेरी आंखों में हमेशा के लिए जिंदगी का मुकम्मल फ्रेम उतार गया। सुना है लोग वक्त को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं, पर आज समझ आया कि जब हम टिक टिक करती घड़ियों के शोर से दूर बस इसी पल में आकर ठहर जाते हैं, तो हम वक्त के कैदी नहीं, खुद वक्त बन जाते हैं। थैंक यू सुकरात, मुझे वक्त के पीछे भागना नहीं, उसके संग जीना सिखाने के लिए।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुपमा श्रीवास्तव की कहानी 11वां सेकंड। वाचक स्वर आरती श्रीवास्तव का था, संपादन सहयोग सौरभ धारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र नेगी।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के समय सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है। दोनों देश संपर्क सुधारने और बाधाओं को दूर करने पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या 626 हो गई है। लगभग 2000 लोग लापता हैं। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया है। डॉ जयशंकर ने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमरीकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा कि भारतीय सेना ने जेवलिन मिसाइल की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन को दर्शाता है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू इस महीने की 31 तारीख से 2 दिन की सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह बैठक गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख के पहले सम्मेलन की 65वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has left for his four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic this morning. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said that in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. The Prime Minister said that he is looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, on further deepening cooperation in trade and investment, digital connectivity, defence, energy, and on advancing the shared visions of Viksit Bharat and Yangi Uzbekistan. The Prime Minister said that at the invitation of the President of the Kyrgyz Republic, Sadur Japarov, he will travel to Bishkek to participate in the 26th SCO summit. Mr. Modi said that he is looking forward to advancing India's vision for the region, anchored in security, connectivity and opportunity, and to working with fellow members for a region free from the scourge of terrorism, separatism and extremism, which continue to threaten peace and stability in the neighbourhood and beyond. India has signed a deal with the US for the acquisition of Javelin anti-tank guided missile systems for the Indian Army. This marks India's formal entry as a customer of the famed shoulder-fired weapon, even as both countries work towards its eventual joint production in India. The US Embassy and Consulates in India, in a statement yesterday, said the Indian Army had signed a letter of offer and acceptance for the purchase of the Javelin. US Ambassador to India, Sergio Gore, said the agreement demonstrated the depth of American support for the Indian Army and created new opportunities for our defense industries to work together. The death toll from the devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 626, with 1,924 people still missing, according to the data released by the Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority. 579 bodies have been recovered so far, while nearly 2,000 injured people are undergoing treatment in hospitals. The missing figure of 1,924 includes people from hydropower projects, foreign nationals, civilians and security and government personnel. Meanwhile, India has stepped up humanitarian assistance to Nepal, affected by flash floods, as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu last evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday told the media that India is supporting Nepal in the ongoing relief and rescue efforts. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. The NTA, National Testing Agency, has declared the results of the UGC NET June 2026 examination for 84 subjects. More than 4,000 candidates have qualified for the Junior Research Fellowship. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju will be leading the Indian delegation for the high-level commemorative meeting in Belgrade, Serbia, from 31 of this month till the 1st of September. The theme for the meeting is the legacy of non-alignment lessons for today's world. The External Affairs Ministry in a statement said that the meeting marks the 65th anniversary of the first conference of head of state or head of government of the non-aligned movement. India's Vilavan Senthilkumar won the PSA Budapest Squash Open title in Hungary after defeating home favourite Bulaj Farkas 3-0 in the final. He had an impressive run to the title, beating world number 18 and Asian Games gold medalist Yan Yao-ying 3-0 in the quarterfinals before overcoming fellow Indian Veer Chotarani 3-2 in the thrilling semi-final. Senthilkumar capped his remarkable week with a dominant performance in the final. Prime Minister Narendra Modi today paid homage to the Indian hockey legend Major Dhyanchand on the occasion of National Sports Day. In a social media post, Mr. Modi said that Major Dhyanchand's brilliance in Indian hockey continued to inspire generations. And that is the end of this news bulletin.
3: Ian Akashwani Tura. Nasimang Delioni Watatkapa Hindi or English Kobor Kokna Soaha. Somoy Dauchisa Baji Minich Kungaha. Arya Somoy Nasimang Chasongatali Gitranko Knasona Mangin. Skangpao Hevindro Sangmani Gitranko Knasona Mangin. Gitrangarung Inga Watpahon Ama Nanko Aro O Nono Jojongrang.

0: मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के ऊपर हवा के ऊपरी स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बालेश्वर, केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए आज सुबह तक ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत का पहला मैच कल थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यान आकाशवाणी चूरा समय दिग्नि बाजी मिनट पोंगा Yesumoyo, Dal Salni Dongkwengba program, Aro Dala Tamna Tari Sogumun program Rangko Somoyrang Baksa Sulsu Yatanginga. Chigini Baji Minich Kungo, Kushumani Basumatri Aro Tina Narjerini Borogitrangko Knasogen, Chigini Kolachio Delione Vivid Party program, SMS Ke Bahane VBS Ketarane, Chigini Sotponga Bonga O Vivid Party Jaroka, Sa Bajio Vivid Party Hit Super Hit, Sa kolachio vivid party man chahi git, gni bajio salni English kobor, gni chibungao Hindi kobor, gni baji minit kolachio vivid party, gatam bajio Hindi kobor, gatam bonga bajio English kobor, aro gatam chkungoni gatam baji minit kolrup bonga ona New India samachar ko knasogen. Yarangan dal salni donkwengpa program rangwa, dal jojo nasimang na atamna tari sogumun program rangko somoyrang baksa sulsul yatanginga. Dok baji uyatani sumoi, dok baji minit bonga o shilongani watat kepa achkobor, dok chibonga o, bluchar sangma aru nidolni sonar mutelani gidrangko knasogen, dok kolachio, Garhills ni ayaun mananirang asakre documentary feature ni katamgupa bako knasogen, unijoljo hingbat sangma aru nidolni chibok gidrangko knasona mangen, sni baji Tokyo House program, sni baji o, Sponsored Hindi program ni ngo, Kisan Vani ni chigni gpa episode ko knasogen, chat bajio Hindi kobor, chat bonga bajio English kobor, chat baji minich kungo Western music program, chat kolachio kalsus ani kobor rang, chat sotbri bongao Hindi kobor, sku bajio English kobor, sku chibongao spotlight, sku kolachio vivid party, chkung bajio Hindi kobor, Chikung baji minit bongao English kobor, aro chikung baji minit chikungoni chikung kolachio na vivid party ko knasogen. Yarangan dal tamna tari sogumun program rongwa, da dikdik sani japmano mungkapan program ko knasogen. Mungsa uyatani, Monday raakom anna kragapa, Indiani Prime Minister Narendra Modi, uni chang rachasa kolachisni gapa, man ki baat pa gisikni katta ko, Rebankpa August Jani Kolachi Tariko Wan Robibar Salni Chisa Bajio Asongi Manderangna Agan Prakatgen Apsankon Achkuchi Peskai Aganatska Gbako Joljol Nasimang Knasona Mangen Pulsatai Atamni Chet Bajio Achkuchi Peskai Aganatska Gbako Knasotaina Mangen Nasimang Chungi Station Ni Program Ranko Rachagni Rchagni Sotbrigatam Point Gatamsa Meter Medium Wave Ba Hajalsa Rchagni Kolachigatam Kilohertz FM Sa 0.3 MHz Aro News on Air App Gata Knasona Matgen Yan Akash Vani Tura
3: Ayo, yamis tirang de tona krajok dalio kai chaman genok.
4: Baba yan takaba chani rang de naknadi namjawa, na adi chigapa chani rang kodi dontong na sanangjok ba.
3: Na jutong, na mai komasia, angi kusuk chana sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Antang ni chana ska ko chusokot na man na nangako na wijama.
4: Amba, dao chapre timung jamano na sajoko de, nang ni beni namgini na sangani ba. Matum, chigapa aro kari nang tot kapa chani rang ko watpoha, nang ni beni namgini na nama chani mishu samjak rang ko sa chaboha.
3: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata wiyat. Tengah.

나시망 쿠쿠마니 바수마타리 니기트랑고 크나소나 마나하 다우졸조 나시망 디나 날저리 니기트랑고 크나소나 만겐

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों आनंद बख्शी का लिखा गीत है, आवाज किशोर कुमार की, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजपूत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीत है रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है राम भरोसे, और इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे किशोर कुमार और साथियों की।

0: तो जरा 3 बज रहे हैं, 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजा और रंक।

यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है बपी लहरी का, फिल्म का नाम है चलते चलते।

आते रहना। अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं विविध भारती का सुरीला सफर कार्यक्रम। लेकर बढ़ाई अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि इन शब्दों से आप गाने चुने, तो वो इबारत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पढ़कर सुना रहे हैं। आज यूं ही पुराने पन्ने पलट रही थी, अचानक एक मुड़ा तुड़ा पत्र उंगलियों के बीच ठहर गया। उसके साथ सूखे गुलाब की कुछ पंखुड़ियां थीं। वक्त ने जिन्हें मुरझा दिया था, मगर उनमें अब भी तुम्हारे प्यार की खुशबू बाकी थी। पत्र खोलते ही जैसे बरसों पुरानी मोहब्बत फिर से सांस लेने लगी। तुम्हारे शब्दों में वो इंतजार था जो कभी मेरी रातों का साथी हुआ करता था। याद आया कि हमने गुनगुनाया था, रात भर आपकी याद आती रही, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, और तुम्हारा इंतजार और मैं खामोशी ओढ़े चांद को निहारती रहती थी। कितना कुछ चाह कर भी हम एक दूसरे को भूल नहीं सके। तुम मेरे हमदर्द, मेरे हमसफर थे, या शायद ये सब वो तेरे प्यार का एक बहाना था। ना समझ मन को कैसे समझाऊं, आज सूखी पंखुड़ियों को हथेली पर रखकर लगा चांद बदल गया, रात गुजर गई, इंतजार भी बीत गया, मगर तुम्हारी यादों के पत्ते सूख कर भी खुशबू नहीं खोए। तो ये है आज की इबारत, और इसी इबारत में छुपे हैं आज के शब्द, और एक एक शब्द में कई कई गाने छुपे हैं। तो आज जरा आपकी परीक्षा कठिन है, देखिए कि कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं। आज तो हमने क्या किया है कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर आई और आपने जो गाने सुझाए हैं वही गाने हमने ले लिए हैं, और कुछ गाने अपनी ओर से हमने ऐड किए हैं। तो जरा गाने सुझाइए, देखिए हो सकता है आपके और हमारे गाने एक हो जाए। बहरहाल शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्राम का, और ये संगम फिल्म का गाना है। सुनिए और देखिए कि इबारत में ये शब्द आया या नहीं, और कौन सा वाला शब्द है। साथ में बूझिए पहेली कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है, आसानी से बूझ जाएंगे। दो हीरो हैं, एक हीरोइन है। पत्र कौन लिखता है किसके नाम, जरा ये बताइएगा। किसके नाम पत्र लिखा जाता है, किसकी ओर से, हीरोइन की ओर से पत्र लिखा जाता है, तो किसके लिए लिखती है। संगम फिल्म का गाना ये रहा।

सूरज फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज. हमने पूछा था कि हीरो हीरोइन कौन है और कौन पत्र लिख रहा है. सभी श्रोताओं ने बताया राजेंद्र कुमार लिख रहे हैं वैजयंती माला के नाम, और एक नायक और है राज कपूर. फिल्म संगम, सही आपने बताया, ये संगम फिल्म का गाना था. सूरज फिल्म का गाना आगे आने वाला है, और आप बता सकते हैं कि सूरज फिल्म का कौन सा गाना इबारत से मैच करेगा, उसमें कौन सा शब्द आता है जो इबारत में है. और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत हमें कितनी पुरानी यादों के नगर में ले गई, खत या चिट्ठी का तो जैसे युग बीत गया. खत कितनी कहानियां, अनकहे किस्से और जज्बात को अपने में समोए हुए होते हैं. मुझे खत लिखना बेहद पसंद था है, और मुझे खत के जवाब में इंतजार में भी मजा आता था. खत किसी का होता था, बुआ का होता था, जब बच्चे बाहर पढ़ते थे तो उनके खत की राह देख रही होती थी. पर वो रोमांच आजकल मैसेज के रिप्लाई आने पर नहीं है. बिल्कुल सही फरमाया. तो जरा बताइए कि आप में से कौन आज भी पत्र लिखते हैं और किसके लिए. एक श्रोता ने लिखा है कि गानों की फेहरिस्त लिखिए, पुकार लो, तुम्हारा इंतजार और वो तेरे प्यार का गम, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कैसे समझाऊं, वगैरह वगैरह. बहुत सारे श्रोताओं ने गानों की लिस्ट भेजी है, और सच कहें तो आज हम आपके गानों को ही आप तक पहुंचा रहे हैं. और एक श्रोता ने लिखा है तेरा खत ले के सनम पाँव कहीं पढ़ते हैं. बहुत सारे श्रोताओं की पसंद एक है आज. और एक श्रोता लिख रहे हैं कि पुरानी किताबों के कभी पन्ने पलटते समय अनायास ही सूखा गुलाब का फूल नजर आने पर उसे कभी फेंकने का मन नहीं होता, आज भी वैसा ही रखा रहता है और बीते हुए पलों की खूबसूरत तस्वीर को बयां करता है. सूखे गुलाब की पंखुड़ियां मुरझाती नहीं बल्कि महकती हुई आंखों में उतर आती है. ये बताइए हमें कि क्या कभी आपने भी पत्र के साथ गुलाब का फूल भेजा था. अगर भेजा है तो वो लम्हा याद कीजिए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और हमें गुलाब और कली फूल वाला गाना भी सुझाइए कि कौन कोई ऐसा गाना है जिसमें गुलाब शब्द आता है या कोई फूल के नाम आते हैं, वो भी आप सुझा सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे. फिलहाल सुनिए सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना, माफ कीजिएगा सूरज फिल्म का ये गाना, और बताइए कौन है हीरो हीरोइन.

ये सवाल हमारी ओर से था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। जरा ये बताइए कि इसी फिल्म का एक गाना और है जो हमारी इबारत में वो शब्द आता है, कौन सा वो शब्द है जो हमारी इबारत में शामिल है और इसी फिल्म का गाना है। देखते हैं कौन लोग बूझ पाते हैं। आसान पहेलियां तो बहुत लोग बूझ लेते हैं, हो सकता है ये पहेली भी कुछ लोगों के लिए बड़ी आसान हो। एक श्रोता ने कई श्रोताओं ने हमदम शब्द से कई गाने सुझाए हैं, लेकिन हमें और भी इंतजार है, कुछ और गाने सुझाइए जो हमारे गाने से मैच कर जाए, तब हम सुनवाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों के लिए कहें, उन सूखे हुए फूल और समाहित एक एक पलों की वो यादें ताज़ा हो रही हैं जो हम लिखा करते थे बचपन में। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में और अपनी किताब में बहुत बार गुलाब का फूल रखा क्योंकि हमें फूल बहुत पसंद है, पर क्यों ऐसा होता है कि जो चीज़ बहुत पसंद है वही नहीं मिलती। बहुत बार अब देखो ना, हमारे घर गुलाब उतने अच्छे से लग नहीं पाते, बहुत बार लगाया, कभी गुड़हल में इतने फूल रोज खिलते हैं पर वो भी कई रंग के। कहा जाता है कि गुलाब बहुत मुश्किल से लगता है और लगता है तो जल्दी से मुरझा जाता है। गुलाब की परवरिश के लिए आप कहीं खोजबीन कर लीजिए, किसी जानकार से पूछ लीजिए, माली से पूछ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पीले रंग की तितली पकड़कर किताब में रख दिया करते थे, उसका रंग कॉपी पर आ जाता था, लेकिन आज उस बात का दुख होता है। बिल्कुल, अगर तितली पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं तो कितनी दुखद बात है ना, वो तितली का भी एक पूरा परिवार होता होगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनवाते हैं ये गाना। क्या आपने ये गाना सुनने के लिए सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं, बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। खामोशी फिल्म का दूसरा गाना जो हमारे इबारत में जो शब्द है वो भी बूझिए।

हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, राजेंद्र कृष्ण और कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं ने जवाब सही दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। फिल्म थी ब्लैकमेल। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बड़ी बहन जब 10 से 11 साल की थी तब हम लोग बासंता गांव में थे और मेरा और संगीतकार जयकिशन जी का जन्म स्थान, तब वहां तितलियां बहुत आती थी, उन्हें पकड़ती भी थी और बाद में कुछ सेकंड्स के बाद छोड़ देती थी। ये अच्छी बात है, पकड़ा तो उसे छोड़ भी दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत इन पन्नों से जुड़ी हुई है और बहुत सारे श्रोता इबारत से जुड़ी हुई अपनी बात लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था हमदम शब्द से कौन सा गाना याद आ रहा है। भाई अनेक अनगिनत गाने लोगों ने सुझाए, मेरे सनम फिल्म का गाना सुझाया है श्रोताओं ने और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में यादें ताजा कर दी आपने, प्रेम पत्र जो इतना संभाल कर रखा था दशकों बाद मिला, पुराना प्रेम फिर जागृत हो गया जो समय की परत में पीछे छूट गया, जिसमें सूखा गुलाब अपनी खुशबू समेटे दबा था। जो गाने चुने हैं वो है रात भर आपकी याद आती रही, मेरी सांसों को जो महका रही, कैसे समझाऊं। भाई ये सारे गाने हम भी सोच रहे हैं लेकिन अब क्या करें, समय तो एक घंटे का है, इसमें कौन कौन से गाने शामिल करें। अब हमदम शब्द से जो गाने हमारे श्रोताओं ने चुने हैं उनमें से एक लिया।

हमने खामोशी फिल्म का गाना एक सुनवाया था और पूछा था कि उसमें कौन सा एक गाना और है जो हमारे इबारत में वो शब्द शामिल है। सभी श्रोताओं ने लिख डाला, तुम्हारा इंतजार पुकार लो, तुम्हारा इंतजार, बिल्कुल सही लिखा है। और एक नहीं कई श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और ये जो गाना अभी हमने आपको सुनवाया, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का नाम था। हालांकि हमदम शब्द से बहुत सारे गाने आए हमारे श्रोताओं की ओर से, इसमें हीरो हीरोइन जॉय मुखर्जी और आशा पारिक, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र गुलाब तितलियों शानदार इबारत पर आज सुरीला सफर, शानदार प्रस्तुति और शानदार आपकी टिप्पणियां हमें प्रभावित कर रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कंक्रीट के इन जंगलों में ढूंढती हैं वो बाग बगीचे, उड़ती हैं मासूम तितलियां, काले धुएं शोर के नीचे, मशीनी इस दौर में भी वो पंखों में रंग सजाती हैं, खो न जाए प्रकृति का सौंदर्य, बस यही याद दिलाती है। सुनिए अब अगला गाना फिल्म गमन से, आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार। आपको गायिका का नाम बताना है और गीतकार का नाम बताना है। फिल्म गमन।

इस गाने से जुड़ी हुई पहेली आपको पूछना है गायिका का नाम, गीतकार का नाम और अगला गाना कौन सा होना चाहिए। जरा उस गाने के बोल लिखिए फटाफट, ताकि हम वही गाना सुनवा सके जो आप सुनना चाहते हैं।

गमन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था गायिका का नाम और गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, गायिका का नाम भी और गीतकार का नाम भी। छाया गांगुली की आवाज थी, गमन फिल्म का नाम था और गीतकार मखदूम मोहिउद्दीन, संगीतकार जयदेव थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आज बहुत व्यस्त हैं उसके बावजूद आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारे सारे गाने इस प्रोग्राम में शामिल हो गए, लेकिन प्रोग्राम का आखिरी गाना हमने आपसे पूछा था, अभी तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई। बहरहाल हमें लगता है कुछ श्रोताओं ने जो पहले लिखा था इस गाने का जिक्र किया था, वो गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए और जरा बूझिए फिल्म का नाम क्या है।

पगला कहीं का फिल्म का नाम था और ये हमारा सवाल था, सभी श्रोताओं ने सही बूझा और लता मंगेशकर की आवाज थी। अक्सर आप मोहम्मद रफी की आवाज वाला वर्जन सुनते हैं। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी और हमने प्रोग्राम का आखिरी गाना आपसे पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी पसंद हमारी पसंद और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारा वाला गाना बज गया बहुत सारा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सुरीला सफर का ये सुरीला सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

साथियों, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

0: www.gov.in. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu last evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday told media that India is supporting Nepal in ongoing relief and rescue efforts. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju will be leading the Indian delegation for the high-level commemorative meeting in Belgrade, Serbia from 31st of this month till 1st of September. The theme for the meeting is the legacy of non-alignment, lessons for today's world. The External Affairs Ministry in a statement said that the meeting marks the 65th anniversary of the first conference of head of state or head of government of the non-aligned movement. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. U.S. President Donald Trump has announced the biggest oil deal with Venezuela. The landmark agreement with Venezuela will give the U.S. majority control over more than 65 billion barrels of proven crude oil reserves. He said the agreement was secured at no cost to the American taxpayer and will more than double total American oil reserves. The U.S. administration claims the massive influx to the U.S. oil supply will drive down domestic gasoline prices long-term while putting Venezuela's economy on a path toward economic recovery. The announcement comes following months of intense U.S. diplomatic pressure, sanctions enforcement and direct oversight of Venezuelan oil exports. Iranian President Masoud Pezeshkian has said that Tehran is open to negotiations with the United States but remains cautious about Washington. He said Iran would honor its commitments if the U.S. also upheld its side of the agreement. In a TV interview, Pezeshkian said diplomatic efforts could focus on reviving the June peace memorandum of understanding. He noted that Iran had exported nearly 90 million barrels of oil while the agreement was being implemented. Pezeshkian's comments came as Iran continues to grapple with economic pressures at home. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live-streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Central Warehousing Corporation, or CWC, has successfully dispatched the second Onion Express of the season from Nashik, Maharashtra to Chennai, Tamil Nadu. In a social media post, CWC said the initiative will further strengthen the supply chain and ensure the timely availability of onions across markets. National Sports Day is being celebrated across the country today to commemorate the birth anniversary of one of India's greatest sporting icons, Major Dhyanchand. The day celebrates India's rich sporting heritage and encourages people to make sports a regular part of their daily lives. More from our correspondent.
1: National Sports Day 2026 is being observed as a three-day nationwide campaign under the pillars of tribute, play and move. This year, National Sports Day is being celebrated under the call Ek Ghanta Khel Ke Maidan Mein. Various in Delhi Union Ministers Dr. Mansukh Mandviya and Arjun Ram Meghwal participated in a cricket match under the campaign. Talking to media, Dr. Mandviya called upon people to spend at least 1 hour on the sports field to remain fit and healthy.
2: Aaj National Sports Day ke avsar par.
3: The occasion of National Sports Day, a one-hour sports activity has been organized across the country to promote the fit India movement. Since this morning, I have been receiving information that lakhs of young people across the country have come out to play for an hour in playgrounds and in every street. I am happy to see that the country is changing under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
2: मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा.
1: मिस्टर मेघवाल सेड ही प्लेज बैडमिंटन एवरी डे. ही सेड स्पोर्ट्स हेल्प पीपल रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग स्ट्रेस अवे. द गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया स्पोर्टिंग इकोसिस्टम विद द रिजल्ट्स इंक्रीजिंगली विजिबल ऑन द ग्लोबल स्टेज. इंडियाज परफॉर्मेंसेज एट मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स रिफ्लेक्ट द कंट्रीज ग्रोइंग स्ट्रेंथ अक्रॉस ओलंपिक पैरालंपिक एंड मल्टी स्पोर्ट डिसिप्लिन्स. India's Olympic journey has witnessed a significant transformation in the recent years. The country won 2 medals at Rio 2016, 7 at Tokyo 2020 and 6 medals at Paris 2024. India's performance at the Paralympic Games has also improved remarkably. The medal tally rose from 4 at 20 at Rio 2016 to 19 at Tokyo 2020. At Paris 2024, India recorded its best ever Paralympic performance with 29 medals. Saklena for Akashvani News, Delhi.
0: Prime Minister Narendra Modi today paid homage to the Indian hockey legend Major Dhyan Chand on the occasion of National Sports Day. In a social media post, Mr. Modi said, Major Dhyan Chand's brilliance in Indian hockey continues to inspire generations. Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman today highlighted India's broad-based growth, reform momentum and expanding opportunities for long-term investment in Chicago. The Finance Minister today addressed a high-level business roundtable with leading investors and business leaders. A key focus of the meeting was manufacture in India, for India and for the world, with opportunities across manufacturing, AI and digital, financial services, infrastructure, food processing, defense and advanced technologies. The India Meteorological Department IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Odisha till Monday. Heavy rainfall is also likely to hit Bihar, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and parts of northeastern states for the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic, says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia. Death toll in Nepal flash floods rises to 626, over 2,000 people still missing. India steps up humanitarian assistance. US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran is open to negotiations with Washington but remains deeply cautious. National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyan Chand and salutes dedication of sportspersons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha for next 2 to 3 days. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना. कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा. नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई. 2000 से अधिक लोग अब भी लापता. भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है. आज राष्ट्रीय खेल दिवस है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा. और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए. श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
5: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
4: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
5: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
4: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
6: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
4: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
7: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-1213। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807 +977-970-910-7500 और +979810326117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142849 समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
4: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
8: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
4: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला

0: साथ हुए समझौते से अमरीका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमरीका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमरीका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमरीकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमरीकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमरीकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
2: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रूपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
4: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
5: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को

0: आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
1: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। संगीतकार थे मदन मोहन, फिल्म का नाम था सुहागन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। तर्ज है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुना जाए नीरज का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।
5: जैसे

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नखमे। तो अब अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

साथियों, कार्यक्रम सदाबहार नगमे की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की चार दिन की यात्रा पर से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और बात करते हैं ताशकंद में मौजूद अपने संवाददाता से।
1: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
0: एक बात और जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
1: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी हैं। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने आज प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और सिक्किम में आज गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has embarked for his two-day visit to Uzbekistan. Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said that in recent years, India-Uzbekistan strategic investment, digital connectivity, defense, energy and on advancing the shared visions of Viksit Bharat. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said that the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. Rescued people are being taken from high-risk areas to safer locations. Additionally, the search and rescue officials are working to clear the roads blocked by flood debris and landslides to reopen access and facilitate relief operations. The Ministry of External Affairs yesterday said 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi, Mr. Jaiswal said 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu last evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday told media that India is supporting Nepal in ongoing relief and rescue efforts. Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman today said, as global companies reassess their supply chains and capital allocation, India offers not only the scale of a vast market, but also depth of a long-term investment and operating platform. She made these remarks while addressing a high-level business roundtable with leading investors and business leaders in Chicago, United States. She highlighted India's broad-based growth, reform momentum, and expanding opportunities for long-term investment. Ms. Sitharaman also emphasized India's investment appeal lies in the convergence of scale, sustained economic growth, skilled talent, world-class infrastructure, technological advancement, and a decade of consistent reforms. Iranian President Masoud Pezeshkian has said Tehran is open to negotiations with the United States but remains cautious.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर डायरी का।
1: यान आकाशवाणी चूरा नासिमांग दिल्ली वादत कपा हिंदी और इंग्लिश खबर को अपना स्वाहा समय दो अथामनी थाम्बाजी मिनिच कुंगा और या स्टेशन प्रोग्राम रंग को कमातानी समय बा यानन बोना तादक दिक्सानी जामानो दिल्ली दिंग थांग प्रोग्राम रंग को रचासा पॉइंट्स नी मीटर बैनो एफएम चैनल को खना सुना मनगेन खना तुम सुख बसकान जी कौन सलाम यान आकाशवाणी चूरा।

कन्यादान फिल्म का गाना था और मोहम्मद रफी की आवाज थी। जो सुनने के लिए पत्र हमें मिले वो ये है, अकोला से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनीषा, वेणु संगेकर, रीना, रोहित और इनके मित्रगण। फरमाइश आई अन्य श्रोताओं के भी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केशव, जत्तो रानी और इनके साथी महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे ने फरमाइश भेजी वरुण जौलका से, और इसी गाने की फरमाइश आई थी अनिल वचकामले, सुषमा वचकामले सभी और इनके अन्य मित्रगण। श्रोताओं आपसे अनुरोध है कि कृपया जब आप फरमाइश भेजते हैं तो साफ साफ नाम लिखें ताकि आपके नाम सही सही पढ़े जा सके। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

मुबारक बेगम की आवाज थी, दत्ताराम का संगीत था, फिल्म थी मोरे मन में। तो फरमाइशी पत्र आए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके अन्य साथी, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई और इनका पूरा परिवार, कृष्ण नगर टीवी टावर्स से। और हमारे ये श्रोता है छाया बंछोर, प्रीति, चंद्रकिरण, पोषण बंछोर और इनका पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ पाहरा जिला दुर्ग से। कटारिया कच्छ से पत्र आया है मानतिक राघाणी, डॉक्टर निषाद राघाणी, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश मिली है।

0: जबलपुर से फरमाइश आई थी जिनेन्द्र जैन महेंद्र और इनके साथियों की ओर से, और फरमाइश आई थी दिलीप कुमार सेंचुरी, विमला रानी, शिम्पी, सुरेश, अमित और इनके साथियों की ओर से, आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हैया बाजार पूर्णिया से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग, आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू पहला भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो आइए सुनते हैं नाटक आई लव यू पहला भाग।
3: इधर भी नहीं, यहाँ भी नहीं।
4: क्यों जी, ये क्या ढूंढ रहे हो?
3: मेरा सिर।
4: वो क्या तुम्हें सोफे के नीचे मिलेगा?
3: तुम अपनी रसोई देखो, मुझे मेरा काम करने दो।
4: अरे, देखो जरा, देखो तो।
3: क्या देखूं? क्या देखूं? तुम में देखने लायक है ही क्या?
4: अरे मैं कह रही हूँ, तुमने कमीज उल्टी पहन रखी है।
3: तो क्या, मेरी कमीज मैं चाहे जैसा पहनूं?
4: अरे लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा?
3: क्या देख लिया तू? हैं? हैं?
4: ये तुम्हारी कमीज और क्या?
3: मुझे छोड़कर लोग मेरी कमीज क्यों देखेंगे?
4: क्योंकि तुमने ये उल्टी पहनी है।
3: अरे पहनी है ये क्या काम है, तुम्हें पता है कई लोग तो यूं ही घर में घूमते रहते हैं। मिल गया। ये देखो ये अखबार। चलो अब घंटे भर तक मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, समझी?
4: ये कोई सबे है अखबार पढ़ने का? सुबह से क्या कर रहे थे? हाँ क्या कर रहे थे?
3: हाँ, और तुम जब मुझे 3 दिन की बासी रोटी खिलाती हो तब। चलो चलो अपनी राह लो, रसोई में जाओ।
4: मेरी समझ में नहीं आता आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ने लायक होता है।
3: तुम क्या समझोगी, अखबार पढ़ने से अकल बढ़ती है, अकल।
4: हाँ इसीलिए तो कम अकल वाले ही पढ़ा करते हैं।
3: तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कम अकल वाला पति कैसे पसंद कर लिया?
4: अच्छी पैकिंग देखकर माल खरीदने से कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं।
3: देखो मैं कहता हूँ तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो।
4: रावण सामने खड़ा हो तो सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी ही पड़ती है।
3: क्या कहा तुमने? तुमने मुझे रावण कहा?
4: नहीं नहीं, मैं तो अपने को सीता कह रही थी। और इन साहब को बैठे बैठे अखबार पढ़ने की सोच रही हूँ। अखबार पढ़ेंगे, पढ़ो बैठ कर अखबार।
3: बाप रे बाप, कमाल की खबर छपी है। एक महिला ने दो सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। अरे भाई रेखा, रेखा भाई सुनती हो?
4: अरे क्या है क्या है?
3: ये देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसके अंदर।
4: अरे मुझे फुर्सत नहीं है।
3: फुर्सत नहीं क्यों? रसोई में तुम क्या धो रही थी?
4: आज रामू नहीं आया, जानते हैं रामू नहीं आया। बर्तन कौन साफ करेगा, तुम्हारा चाचा?
3: क्या कहा तुमने?
4: मैंने कहा बर्तन कौन, तुम्हारा चाचा साफ करेगा।
3: चाचा मर गए। चाचा। अब ये राजा भाई टावर की तरह खड़े खड़े क्या देख रही हो? ये सब सामान वगैरह उठाओ, ठीक करो। चाचा जी।
4: अरे क्या अचानक तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इस तरह से गला फाड़ रहे हो?
3: अरे अरे अरे, आज जगजीवन चाचा और रमा चाची हमारे यहाँ आ रहे है ना।
4: क्या
3: अब ये सांसें क्या भर रही हो? कल रात मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे सुबह याद दिला देना?
4: अरे वो रामू नहीं आया ना, तो मैं इसी परेशानी में मैं तो भूल ही गई।
3: भूल गई? खाना नहीं भूली? अरे रामू का तो बहाना है।
4: अब करना क्या है वो बोलो।
3: अरे उनके जैसे करोड़पति चाचा खुद चलकर अपने घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए।
4: चाचा जी तुम्हें मिलने आ रहे हैं या हमारे बर्तनों से? और अगर चाचा जी आ भी रही हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
3: तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो?
4: जी गलती हो गई बस।
3: गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की।
4: तो गलती सुधार लो।
3: गवाही झूठी हो तो सुधारी भी जा सकती है, लेकिन ये तो न जाने किस मुसीबत से पाला पड़ा।
4: बस बस रहने दो, आप और बस बहुत हो गया, अब और समय बर्बाद मत करो, जल्दी से सब साफ सफाई कर लो। हाँ बस
3: साफ सफाई, साफ सफाई कौन करे, मैं करूं?
4: तो क्या हुआ, भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए?
3: तो क्या तुम मेरे हाथ में झाड़ू थमा दोगी?
4: तुम नहीं क्या लड्डू लगा दूं?
3: इतनी खूबसूरत उम्मीद तुमसे करना बेकार है।
4: क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही वक्त बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा?
3: हा? अरे इतना तो सोचो कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति?
4: पति नहीं, वनस्पति हो। अभी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे, कभी
3: उधर। एक सुन लो, कह देता हूँ मैं साफ सफाई नहीं करने वाला, नहीं करने वाला।
4: तो मत करो, चाचा तुम्हारे आ रही है, मेरे नहीं।
3: हाँ, और जब तुम्हारी चाची आई थी तो मैं नहीं गया था श्रीखंड लेने के लिए?
4: चाची बेचारी तो सीधी अफ्रीका से आ रही थी।
3: ये बताने की जरूरत नहीं, वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ गया था।
4: और तुम श्रीखंड लेने इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हारे लिए चाची पैंट का कपड़ा लेकर आई थी।
3: जी, और वो पैंट धोते ही सिकुड़ कर हाफ पैंट हो गई थी। ना ना करते भी तुम्हारी चाची कितना सारा खाना खा गई थी। मेरी चप्पल कहाँ है?
4: कहाँ जा रहे हो?
3: चाचा जी के लिए थोड़ा गुलाब जामुन और रसमलाई लेकर आता हूँ, उन्हें घाट कूपर की मिठाई बहुत पसंद है। चलो ये तुम्हारी चप्पल।
4: अरे अरे मेरी चप्पल उतारो, उतारो मेरी चप्पल, कोई जरूरत नहीं मेरी चप्पल पहनने की। अरे करोड़पति होंगे तो अपने घर के, इन पैसे वालों को कभी किसी की कदर नहीं होती। हाँ जब ये लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितनी भाग दौड़ करके इन्हें लेने जाते हैं, और जब हम इनके घर जाते हैं तो ये लोग मुंह बनाते हैं। हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं, और ये लोग हमें क्या खिलाते हैं मालूम है? आलू की सब्जी और रोटी, जैसे हम कोई भिखारी हैं।
3: अब रहने दो, रहने दो, मेरे चाचा जी ऐसे नहीं है।
4: तुम्हारे ही नहीं, दुनिया के सारे करोड़पति चाचा एक ही जैसे होते हैं।
3: तुम मुझे चप्पल लाकर देती हो या नहीं?
4: चप्पल टूट गई है।
3: टूट गई? किसने तोड़ी?
4: अरे तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलावा इस घर में और किसके पांव में आएगी?
3: अच्छा भाई, टूटी हुई सही, मगर वो है कहाँ?
4: होगी कहीं पड़ी हुई, ढूंढ लो। तुम्हारी चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं क्योंकि पूजा के लिए ले जाएगा।
3: उफ़, अरे भाई चप्पल तो मिल ही नहीं रही है। चलो जाने जाने दो, मेरे बूट कहाँ है? बूट लाओ।
4: वो अरे वो
3: भाई मैं कहता हूँ मेरे बूट कहाँ है?
4: अरे वो उधर घोड़े के नीचे पड़े हैं, वो देखो। उधर
3: घोड़े के नीचे मेरे बूट किस गधे ने रख दिए?
4: कल रात तुम्ही ने वहाँ उतारे थे।
3: अरे भाई इसके फीते कहाँ गए भाई?
4: ओहो अब मुझे क्या मालूम,
3: कल तो थे ना।
4: चूहा ले गया होगा।
3: चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था?
4: क्यों, तुम्हारे चाचा आ सकते हैं तो चूहा क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं तो तुम क्यों इतना खुश हुए जा रहे हो? तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
3: अब तुमने मुझे दीवाना कहा है?
4: अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है भाई।
3: लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ था ना, मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है?
4: हाँ चाचा, कल मामा, परसों मौसा, दरवाजे पर बोर्ड लगा दो मनोहर लाल की धर्मशाला।
3: मैं कहता हूँ चुप बैठो नहीं तो। अरे भाई इस बूट का फीता कहाँ गया?
4: जाओ बाजार से खरीद ला, जाओ।
3: बाजार कैसे जाऊं, बूट में फीता नहीं है, चप्पल टूटी हुई है।
4: नंगे पाँव जाओ, पद यात्रा करो, नेता लगोगे।
3: रेखा रेखा तुम समझती क्यों नहीं हो, जरा तो सोचो, तकदीर वालों के घर ही मेहमान आते हैं।
4: अरे तकदीर वाली होती तो तुम जैसे पल लेना पड़ती।
3: ओहो, तुम्हें इस घर में किस बात की तकलीफ है रेखा, बोलो ना। पैसा है, नौकर है, चाकर है, फ्लैट है, फ्रिज है, टीवी है, फोन है,
4: लेकिन रामू नहीं है। इस तरह से मेहमानों की भीड़ लगती रही तो काम के लिए नौकर टिकेगा कैसे, बोलो।
3: नौकरों के न टिकने का कारण मेहमान नहीं बल्कि तुम्हारी ये पक पक है। पक पक।
4: अच्छा, तो क्या मैं बकबक करती रहती हूँ?
3: इसके लिए किसी इंक्वायरी कमेटी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बात तो सूरज की रोशनी की तरह साफ है।
4: अरे शादी के पहले तो कहते थे रेखा तुम बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से फूल चढ़ते हैं।
3: हाँ हाँ, तब मैं खुद फूल था, एक बेवकूफ था, एक गधा था।
4: अभी भी कहाँ सुधरे हो?
3: शादी से पहले तो मैं तुम्हें मेनका समझता था, मेनका। अब मालूम पड़ा कि तुम ताड़का हो, ताड़का।
4: तुम्हें मिठाई लेने जाना है?
3: तुम अंदर जाकर पहले फीता ढूंढो, नहीं तो कम से कम वो टूटी हुई चप्पल ले आओ। वो भी चलेगी। जब आधे दिमाग वाली पत्नी चल गई तो टूटी हुई चप्पल क्यों नहीं चलेगी। मर गया। चाचा जी आ गए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाकर दरवाजा खोलो।
4: देखो मेरे कपड़े वपड़े तो ठीक है ना।
3: घर में इतनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियां पड़ी हैं और तुमने ये कहां की फटी पुरानी पहन रखी है। वैसे तो बिना मतलब घर में बनारसी सिल्क पहना करती हो और जब कोई मेहमान आने वाला है तभी तुम्हें ये चिचड़े पहनने की जरूरत पड़ती है।
4: अरे अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हारे चाचा पीछे के रास्ते से आ जाएंगे।
3: मैं जा रहा हूँ।
5: मौसी मौसी मौसी कहाँ हो तुम? मौसी
3: अरे भाई मैं हूँ।
5: मौसी जी आप? थैंक गॉड, मुझे लगा कोई मोहली पीछे पड़ा है।
3: भाई ये तो बताओ ये इस तरह हाथ क्यों रही हो?
5: महाजी आपके पास रेलवे का टाइम टेबल है क्या?
3: वो क्यों?
5: कोई अच्छी सी ट्रेन देखकर उसके नीचे मुझे अपनी जान देनी है।
3: कोई फायदा नहीं, आजकल गाड़ियाँ टाइम टेबल के हिसाब से चलती कहाँ है।
5: मौसी कहाँ है?
3: अरे मगर क्या बात है, मुझे बताओ तो सही।
5: आपसे क्या कहूँ, आप भी तो आखिर एक मर्द ही है ना।
3: अभी तो तुम्हारी शादी तय हुई है और इतनी जल्दी तुमने इतना तजुर्बा भी कर लिया।
5: मौसी कहाँ है बताइए ना।
3: वो तो भगवान को प्यारी हो गई।
5: मौसा जी ये आप क्या अनाप शनाप पक रहे हैं, अभी सुबह ही तो मैंने उससे बात की थी।
3: ओ हो, तुम अपनी मौसी की बात कर रही हो, मैं समझा मेरी मौसी।
5: लुक मौसा जी, आई डोंट लाइक सच नॉनसेंस जोक।
3: Then you should not marry because marriage is a biggest joke.
5: Please, मौसा जी, मुझे जरा शांति से बैठने दीजिए।
3: घर में झगड़ा कर आई हो?
5: मैं घर से नहीं आ रही हूँ।
3: तो बाहर किसी से झगड़ा किया होगा?
5: मैं क्या सबके साथ झगड़ा करती रहती हूँ? आपको मैं ऐसी लगती हूँ?
3: देखो भाई, इंसान का चेहरा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बेटा। इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
5: enough. बहुत सुन लिया आपका मैंने।
3: देखो बेटे ये घर मेरा है।
5: घर मेरी मौसी का है।
3: और तुम्हारी मौसी मेरी है।
5: ऐसा आप समझते हैं?
3: क्या मतलब?
5: आप मर्द लोग पत्नी को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अपने सुख चैन के लिए रखी गई तासी समझते हैं। लेकिन याद रखिए, अब जमाना बदल गया है, टाइम हैज चेंज।
3: ये सारी बातें अपने होने वाले पति वीरेंद्र को सुनाना मुझे नहीं समझ में आया।
5: नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मैं किसी बंदर से शादी कर लूंगी लेकिन उसके साथ कभी नहीं।
3: क्यों बेचारे बंदर की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो?
5: मौसा जी,
3: तो तुम वीरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती?
5: नहीं।
3: लेकिन कल तक तो तुम लोग साथ साथ घूमते थे फिरते थे।
5: कल जो किया वो आज भी करना जरूरी है क्या?
3: अरे मगर शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं।
5: हाँ लेकिन ये बात एक मर्द कहाँ समझते हैं, इन्हें क्या।
3: लेकिन तुमने अपने डैडी से बात की?
5: शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को।
3: मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे।
5: आप मुझे पता ये मौसी भर गई है क्या?
3: नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में होगी।
5: तो इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं?
3: लेकिन तुम्हें मौसी से क्या काम है?
5: मैं मौसी से यही कहने आई हूँ कि मेरे मम्मी डैडी को समझाइए।
3: किसके बारे में?
5: मैं अपनी मंगनी तोड़ना चाहती हूँ।
3: क्यों, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो?
5: प्यार? माय फुट, नो, आई कांट लव एनीबॉडी।
3: लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या?
5: अत्याचार, नारियों पर अत्याचार। तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? क्या अब भी तुम औरतों को अपनी गुलामी समझते हो? कहने को तो रसोई की रानी और असल में काम वाली ही समझते हो ना। सभी मर्द अहंकारी होते ये मुझे मालूम था, लेकिन इतने मीन होते ये आज ही मालूम पड़ा। परशुराम ने जिस तरह क्षत्रियों का संहार किया था, मेरा बच चले तो मैं सारी पुरुष जाति का संहार कर दूं। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को पैरों तले कुचल डाला था, राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश किया था, बस उसी तरह।
3: भाई जल्दी आओ, मेरी जान खतरे में, हेल्प प्लीज, हेल्प रेखा।
4: अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, इस तरह क्यों दहाड़ रहे हो? तुम्हारे चाचा गुजर गए? तुम क्या हुआ?
3: अरे इस लीना पर माता जी आई है।
4: लेकिन तुम क्यों शोर मचा रहे हो?
3: इस पर पिताजी आए हैं।
4: तुम कब आई लीना?
5: अभी थोड़ी देर पहले।
4: मुझे बुलाने में तुम्हें तकलीफ हो रही थी। बैठो नालीना, बैठो। देखो ये साड़ी कैसी लग रही है।
5: ओहो मौसी, फॉरगेट साड़ी, आई एम वेरी सीरियस।
4: क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, आज तो तुम वीरेंद्र के साथ बाहर जाने वाली थी ना।
5: वीरेंद्र, वीरेन, वीरेन, वीरेन, वीरेन।
4: क्या हुआ, क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
5: उससे क्या हुआ है? अरे वो तो घोड़े जैसा है।
4: लीना ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला पति है।
5: पति? गधा है गधा।
3: मालूम होता है लात खाकर आई है।
4: तुम बीच में ना बोलो जी।
3: चाचा जी आ रहे हैं, मालूम है ना। अरे लीना ठीक है, ये मैं तुम्हारी चप्पड़ी पहन कर चला जाता हूँ।
4: अरे अरे ये क्या पागलपन है,
3: थोड़ी छोटी होती है बस।
5: लेकिन मेरी चप्पल से आपको क्या काम?
3: गुलाब जामुन, रस मलाई
5: मुझे नहीं खानी।
4: इनके चाचा जी पधार रहे हैं। अरे पहले उन्हें आने तो दो। तुम क्या लेडीज चप्पल पहनकर जाने वाले थे?
3: तो क्या हो गया भाई, तुम लोग भी तो हमारी पैंट पहनती हो, शर्ट पहनती हो, घड़ी पहनती हो, तो क्या हम तुम्हारी चप्पल भी नहीं पहन सकते? ओहो अब की बार तो चाचा जी हैं।
4: ओहो चाचा जी आ रहे हैं तो ऐसे क्या उतावली हुए जा रहे हो? वो कोई तुम्हारे लिए बंगला बांध कर देने के लिए नहीं आ रहे, समझे?
3: लीना लीना जरा समझाओ इसे। अरे चाचा जी हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ काम की वजह से आए हुए हैं बंबई, और अहमदाबाद में उनकी चार चार मिले हैं। चार चार
4: दो मिले बंद हो गई हैं और दो में हड़ताल चल रही है।
3: अरे तुम्हारे चाचा के पास तो बंद पड़ी हुई घड़ी भी नहीं है। जानती हो लीना, मेरे चाचा जी 2 साल पहले अहमदाबाद के मेयर थे।
4: तभी से अहमदाबाद में पानी आना बंद हो गया है।
3: चुप करो रेखा, मैं कहता हूँ चुप करो। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आ रही है
4: तो कोई नई बात नहीं है। लोक लाज के लिए भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बड़े मिल वाले बनते हैं। एक पैजामे का कपड़ा भी कभी मिला है आज तक हमें?
5: अरे अरे कोई दरवाजा तो खोलो। अच्छा तो मैं ही खोल देती हूँ।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो लीना। देखो तुम ऐसा करो, अंदर के कमरे में जाकर बैठो, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल गई है तो। जाओ ना।
4: बिल्कुल नहीं, इधर बैठो। तुम्हारे चाचा बड़े हैं तो क्या मेरी भांजी ऐसी वैसी है?
5: ये हुई ना बात, तुम्हारा खून खून है और हमारा क्या पानी है।
3: ओहो तुम लोग अपनी बकबक बंद करो, चुपचाप बैठी रहो, मैं ही खोले देता हूँ। अरे वीरेंद्र तुम?
6: ओह थैंक गॉड, लीना तुम यहाँ हो।
5: तुम क्या समझे मैं ट्रेन के नीचे जाकर खुदकुशी कर लूंगी? आई एम नॉट दैट कावर्ड।
6: प्लीज प्लीज लीना।

0: तुम्हारी घर में मेहमान आई है।
1: What are you talking, मौसी? मैं तो घर का ही आदमी हूँ।
2: अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं, ये लोग मेरे मौसा मौसी है।
1: तो मैं कौन सा ना कह रहा हूँ?
2: ना करोगे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी।
0: लीना, वीरेंद्र बैठो ना, क्या बात है, यूं अचानक तुम दोनों?
1: अरे बात बात कुछ नहीं मौसी, थोड़ी देर पहले हम बाग में घूमने गए थे। डार्लिंग, ये आज अचानक तुम्हारा बाग में घूमने का मन कैसे हुआ?
3: बस यू ही, जस्ट फॉर द चेंज। जिंदगी में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए।
1: अच्छा, शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं चाहोगी ना? ए, चुप क्यों हो?
3: सारा दिन क्या बोलती ही रहो?
1: सारे दिन मत बोलो, मगर अभी तो बोलो।
3: क्या बोलो?
1: कुछ भी, तुम बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
3: ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा, हम बाग में बैठे।
1: तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है।
3: माय डियर, अभी तक लर्निंग लाइसेंस ही है, पक्का लाइसेंस अभी तक मिला नहीं।
4: आए ले लो बाबू, मैं लाया हूँ चने मजेदार, चना जोर गरम। बाबूजी चना लीजिएगा।
1: नो,
4: एकदम अच्छा है बाबूजी, गर्मा गर्म है।
1: अरे कह दिया ना नहीं चाहिए।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा काय को करते हो? लो मैं
1: इसीलिए मैं यहाँ आने से मना कर रहा था, देखो यहीं बैठ गया।
3: जाने दो, बैठने दो उसे, उसमें अपने बाप का क्या जाता है?
1: अरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरा जाता है। मैं किसी और की हाजिरी में रोमांस नहीं कर सकता।
3: जब भी हम अकेले में मिले तो क्या रोमांस करना जरूरी है?
1: अरे यही दिन है रोमांस करने के लीना, बाद में तो घर गृहस्थी के चक्कर में इस तरह फंस जाएंगे कि बस मत पूछो। ए चने वाले,
4: हाँ
1: तुम जरा उस तरफ बैठो ना।
4: हाँ क्यों?
1: क्योंकि ये लो 10 का नोट।
4: ए, कितने का दूं बाबूजी?
1: अरे कितने का भी नहीं, तुम वहां बैठो जाकर।
4: वहाँ बैठने का 10 रुपया?
1: हाँ हाँ।
4: बहुत अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छा धंधा है, मैं दूसरे को बेचता हूँ।
1: नॉनसेंस। चलो किसी होटल में चलते हैं।
3: प्लीज यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
1: ऑलराइट, एज यू विश।
5: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
1: क्या है?
5: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
1: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
5: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
3: ये आपने कैसे समझ लिया?
5: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
1: मगर आप हैं कौन?
5: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
1: भूखे हो, पैसा चाहिए, लो।
5: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ, लेकिन बात करने की जगह नहीं।
3: आप क्या चाहते हैं?
5: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
1: स्याही खत्म हो गई?
5: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
3: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
5: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
1: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
5: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किन मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
3: आप जरा भी संकोच न करें वीरेंद्र, इफ यू डोंट माइंड।
1: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
5: मैं आगे बढ़ूं?
3: ओह श्योर।
5: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है, उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है, उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
1: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
5: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
3: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
5: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
3: फिर

0: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
1: पर क्यों?
0: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूँ।
1: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
0: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
2: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
0: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
1: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
0: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा, यही तो मेरी पहेली है।
2: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
0: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
2: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
0: ऐसा नहीं किया जा सकता।
2: क्यों?
0: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
2: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
0: नाटक होता तो जरूर कर देता।
1: मतलब ये नाटक नहीं है?
0: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ, आज ही।
2: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
0: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
1: यानी कि?
0: यानी कि मैं ही अमर हूँ।
2: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं आप?
1: अरे कहाँ गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
2: मुझे तो कोई पागल लगता है। सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
1: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
2: स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
1: रियली?
2: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
1: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
2: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है। That's why I love you, darling. तुम भी कहो ना I love you. अरे कहो ना।
1: हाँ।
2: अरे कहो ना तुम भी मुझे चाहती हो।
1: अरे इसमें क्या बोलना?
2: एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
1: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। We are not teenagers, we are matured.
2: Okay, okay. ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
1: प्लीज, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
2: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
1: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
2: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
1: बेकार की जिद मत करो।
2: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
1: ना।
2: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
1: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
2: ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
1: वीरेन, लगता है तुम पागल हो गए हो।
2: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
1: चलो अब हम चलते हैं।
2: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
1: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
2: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
1: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you.
2: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
1: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
2: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
1: जब देखो तब लव लव लव। मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
3: लीना लीना, ये झूठी जिद है।
1: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
2: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
1: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
2: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
1: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
2: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
1: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
2: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
4: दोनों पागल हैं।
3: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं।
4: तुम्हारे रिश्तेदार अब तक कैसे नहीं आए?
3: फोन करके देखो, चाचा जी जहाँ उतरने वाले हैं। हाँ, वो नंबर है तुम्हारे पास?
4: मेरे पास कहाँ होगा।
3: अब कहाँ जा रही हो भाई?
4: देखूँ तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं।
3: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
4: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
5: आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का भाग पहला, जिसके मूल लेखक

0: प्रवीण सोलंकी, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस तरह से है: मनोहर अजय कश्मीरी, रेखा कामिनी कौशल, लीना भारती कानड़े, वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह, जगमोहन राजदीप, रमा लक्ष्मी शर्मा, और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानड़े।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
0: ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
4: बॉम्बे टॉकीज,
5: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
6: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत।
7: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास आवाज विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। बिना नाम बताए आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके गाने से प्रोग्राम को शुरू करते हैं ताकि लोगों को पता चले आज विविध भारती में कौन आया है।
8: जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास

0: क्या बात है, क्या बात है। अब तो सभी लोग जान गए होंगे कि दीपाली विविध भारती के स्टूडियो में आई हैं। दीपाली साहब, बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
0: ये बताइए कि कैसा लग रहा है विविध भारती के इस स्टूडियो में आकर।
1: एकदम सच बताए, मेरे जीवन में अगर संगीत, एक तो नेचुरल गिफ्ट है जो कि भगवान की देन है, आवाज, वो आवाज
0: जी,
1: जो कि आदमी या बच्चा लेके पैदा होता है, और फिर आपको बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बनाते हैं। आप विश्वास करेंगे, आई एम श्योर करेंगे, जब हम छोटे थे तो हम जहाँ जिस परिवेश में पैदा हुए वहाँ रेडियो बहुत चलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे जीवन का पहला 10 साल विविध भारती ही रहा है जिसने हमको गाना सिखाया है सर।
0: और एक घटना ऐसी है कि जब आप गा रही थी तो माने समझा रेडियो बज रहा है।
1: हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ रेडियो ही बजता था हर वक्त। एज अ चाइल्ड आई वॉज एक्सपोज टू रेडियो, रेडियो, क्योंकि टीवी हर घर में तब नहीं होता था, और होता भी था तो यू नो, अब जॉइंट फैमिली है, 30 लोगों के का परिवार है, तो टीवी दादाजी के कमरे में है जहाँ पे सारे लोग जुटते थे टीवी देखने, और वो महाभारत का टाइम चलता था उस समय, लोग महाभारत देखते थे बैठ के, वो हमको याद है। बट टीवी पे और कुछ एक्सेस नहीं था हमारे पास, पर रेडियो एक ऐसी चीज थी, और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, उस समय भी इतनी खूबसूरत आवाज से आवाजें आती थी अंदर से कि आप सुन

0: विविध भारती और ये है चित्रपट संगीत।
1: क्या बात है।
0: मेरे लिए मेरा एक्सपोजर म्यूजिक के साथ अगर हुआ है तो उसमें विविध भारती, अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है, टू नो व्हाट इंडियन फिल्म म्यूजिक इज ऑल अबाउट।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही दीपाली। वो घटना याद कीजिए जब माँ ने समझा रेडियो बज रहा है, पर गा रही थी दीपाली और वो भी एक प्रार्थना गा रही थी।
0: जी आपको पता है जब हमको तो ऑनेस्टली याद नहीं है, पर मेरी याददाश्त वैसे अच्छी बहुत है, हमको बहुत कुछ याद रहता है, बट वो हमको वो इंसिडेंट याद है जब हम घर आए थे, स्कूल में सिखाया गया था गाना, और घर आए थे और हाथ जोड़ के आंख बंद करके है मालिक तेरे बंदे हम, तब भी ऐसे ही पर एक 3 साल की बच्ची के अंदर से ऐसी आवाज, और आवाज तो मीठी प्यारी सी थी बचपन में ही, तो माँ सो गई थी काम करते करते, उसको लगा कि रेडियो ऑन छूट गया है, तो वो हमको वो मंजर याद है। ये शायद मेरी माँ को भी विश्वास नहीं होगा कि जब वो पलट के हमको देखी थी, क्योंकि उसके पीछे बैठ के हम कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है, और वो पलट के हमको देखी, उसके बाद का हमको कुछ भी नहीं याद है, क्योंकि अपेरेंटली मेरी माँ ऐसा कहती है कि वो कूद के बिस्तर से उठी और हमको गोद में उठा के बहुत रोने लगी, वो याद नहीं है हमको। बट आई रिमेम्बर मी रिहर्सिंग दैट सॉन्ग, क्योंकि अगले दिन स्कूल में बोला गया था कि अच्छे से याद करके आना, हम लोग सुनेंगे। तो मेरी माँ को पता चला कि अच्छा ये तो मेरे पेट से जो निकली है इसको म्यूजिक मिला है, वरदान में मिला है, क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी पुलिस वाले, मेरे दादाजी पुलिस वाले, हमारे यहाँ मेरे जैसी लड़की इज मोर फोकस्ड कि हमको बाइक चलाना आ जाए और गाड़ी ड्राइव करना आ जाए, ये मेरी लाइफ का आई एम वेरी, हमको IPS ऑफिसर बनना था, बट हमको एक गिफ्ट ये मिला था जो मेरी माँ को पागल कर चुका था ये आवाज। तो मेरी माँ को लेकिन नहीं पता था कि म्यूजिक कैसे सिखाएं, क्या करें, स्कूल से बातें आने लगी, डायरी में रिमार्क्स आने लगे कि आप अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाइए, वहां से मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, तो वो तो हमारे साथ चल ही रहा था, बट उनको भी नहीं पता था कि वो रेडियो जब चल रहा था तो उनकी खुद की बच्ची क्या सुन के क्या पकड़ रही थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे।
1: रेडियो एक अंतरधारा की तरह चल रहा था जीवन में, चारों तरफ पुलिस वाले लोग थे
0: जी।
1: और बाइक चलाना भी सीख लिया था।
0: जी बिल्कुल, आई थिंक हम 6th क्लास में थे तभी हम बाइक चलाने लगे थे।
1: 6th क्लास में?
0: 6th क्लास।
1: पैर वैर पहुंच रहे थे?
0: नहीं पहुंचते थे, तो एक दिन चुरा के भागे, वो उस समय साइड स्टैंड पे बाइक लगाना पता चल गया था कि ये मतलब मेन स्टैंड पे अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो बाइक लेके तो दीपाली भागेगी
1: भाग जाएगी
0: चाबी चुरा के,
1: एक्सीडेंट का डर नहीं।
0: हाँ तो डर तो बड़े होने के बाद आता है ना, बचपन में तो कहाँ पता है आपको। अब जब हम बाइक लेके निकल गए और फील्ड में घुमाने लगे गोल गोल, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: अरे भगवान,
0: रोके कैसे, चलाना तो आता है रोके कैसे।
1: हाँ।
0: फिर हंगामा होने लगा, पड़ोसी चिल्लाने लगे अरे छोटी बच्ची किसकी है, क्योंकि वो सरकारी एरिया था, सारे क्वार्टर्स थे और बीच में बड़ा सा मैदान था, वहां पे बाइक घुमा रहे थे, मेरे चाचा आए चिल्लाते हुए बना किए थे इसको बाइक लेके जाने के लिए, ये इसको आप क्यों नहीं समझाती हैं, बेचारे वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे। तो ऐसा था मेरा बचपन में, हम 6th में, हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी ड्राइव करने लगे, पता नहीं क्यों था। मेरे
1: गाड़ी मतलब
0: 4-व्हीलर
1: प्रॉपर वो तो, लाल बत्ती वाली
0: नहीं मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फीमेल ड्राइविंग अ कार, जैसे बचपन में हम लोग जब फिल्में देखते थे, वो एक आजादी का, वो हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों था, इतना ज्यादा उसकी इच्छा इतनी ज्यादा क्यों थी, ये हम नहीं जानते। मे बी आई वॉज, जैसे कुछ लोग जन्म से ही एक लेवल तक वो शायद पिछला कुछ लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनको और आगे बढ़ने की जल्दी बहुत होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब जब उसको प्रेम होगा 12, 13, 14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सच चीजें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे, तो हम थोड़े जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
1: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
0: बना रहा, और बहुत फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए, धीरे धीरे
1: तो पैर पहुंचने लगे।
0: क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया, स्कूल जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम सिक्स स्टैंडर्ड में आ गई हो। उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ, नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर। तो अब भाई सिक्स से लेके एट नाइन्थ तक, मतलब ट्वेल्थ तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी। और 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगे तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8 से ही चिल्लाना शुरू कर दिए थे गाड़ी सिखा दो। बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, काफी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा मेरा लाइसेंस बना है कि नहीं बना है, आ गया तो चलाने दो। लेकिन बिकॉज और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज्यादा उनके ऊपर बदनामी आएगी कि ये पुलिस वाला होके अपनी बच्ची को गलत सिखा रहा है। तो इसलिए हमको 18 तक का वेट करना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन तब तक मुंबई आ चुके थे हम रियलिटी शो की वजह से, और फिर पापा ने यहीं पे गाड़ी खरीद दी।
1: क्या बात है, मुझे ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा था और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
0: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही,
1: एजुकेशन पे फोकस
0: है। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट यू नो ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था। अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ शी इज गुड एट म्यूजिक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का इतना जोर नहीं होगा बिहार में। बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिस पे हम लोग रिलाई कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम, तो पढ़ाई ही इकलौता था। अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो हम पढ़ने में अच्छे थे, और हमको बचपन से ये मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, बहुत लीडर टाइप के थे हम, तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये ज़रूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी। तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे। ये लोगों के बोलने से दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट। और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर होते अगर होते तो।
1: क्या बात है। अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा था?
0: तो म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है, म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, जो वो उनके घर घर में वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही है, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था। क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट्स बहुत नहीं मिलने वाले हैं आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके। तो मेरे टीचर्स काफी बदलते रहे थ्रू आउट, बचपन से लेकर के मुंबई आने तक। एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, क्योंकि कभी, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूजिक क्या होता है, तो किसी तरह से आई थिंक। और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहां भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे। पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11th 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ।
1: बहुत ही रेप्यूटेड,
0: बहुत बहुत बड़ा रेप्यूटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है, मान है। मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के जमाने में जिस लड़की का बायोडेटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे।
1: मतलब इतनी काबिल है,
0: इतनी काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे। और वहां से आई वॉज सेंट टू, यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है IIT का, तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमा के आए तो यू नो
1: मूड इंडिगो में नाम कमाना आसान बात नहीं है। क्योंकि मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे IIT का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉर्पोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामें होती हैं,
0: राइट,
1: तो नशा होता है संगीत का वहां।
0: करेक्ट। तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था. सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वॉज प्लेइंग द लीड एक्टर. और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत मतलब एक ही सुर में चलने वाला टायरसम और टायरलेसली चलने वाला प्ले होता है. और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे, तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कैटेगरी. सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स. और तब जो आज मेरे दोस्त हैं, तब वो वहाँ के जजेस थे, राहुल वैद्या और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो के. आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले. तो इट वॉज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो. ये समझ आया.
1: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
0: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण विश्वास था कि जीत के आएंगे. पता नहीं क्यों था. और पता नहीं हमको बचपन से हमेशा से, हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे. या अच्छा. तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था. या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. तो जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे.
1: क्या प्यारी बात है, बहुत बढ़िया. यहाँ एक गाने की जगह बनती है क्योंकि इस बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं. तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद हैं ही.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे.
0: ओके, तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: सुंदर

0: नहीं मिल बैठ पा रहा था लोगों के लिए, वो स्ट्रगल मेरे लिए ज्यादा था टू लोगों को ये बताना कि हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हम लोग भी होते हैं। हमारा अक्सर ये डायलॉग फेमस हो गया था, बिहारी है तो सींग नहीं होगा मेरा, तुम बिहारी हो लगती नहीं हो।
1: अच्छा,
0: ये हम अपने पूरे जीवन सुनते आए हैं, अब नहीं सुनते हैं।
1: इतना बड़ा पूर्वाग्रह चला आ रहा
0: इतना
1: है।
0: बड़ा, और वो तब समझ नहीं आता है कि वो कितना डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है। जब हम उस समय में थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम क्यों बेचैन रहते हैं, पर वही बेचैनी थी जो बाद में समझ आया कि मेरा काम है गाना गाना और तुम्हारा काम है हमको उसके बेसिस पे जज करना। कहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, मायने नहीं रखता है। बट वो एक स्ट्रगल हमको, जिसको स्ट्रगल शब्द तो अच्छा नहीं लगता, बट वो एक चैलेंज था जो आई हैड टू गो थ्रू।
1: और वो पूरा आपने एक एक करके पार किया। और दरअसल जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, मामला थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ गाना ही महत्वपूर्ण नहीं
0: नहीं
1: होता,
0: होता है, करेक्ट
1: बाकी तमाम चीजें भी
0: करेक्ट
1: धीरे धीरे मायने रखने लगती हैं। तो कितना डिफिकल्ट रहा?
0: बहुत डिफिकल्ट था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस। हमको एक ही चीज पे भरोसा था कि मेरे पास अच्छी आवाज है और हम गा सकते हैं, हमको कुछ भी दे दो हम गा देंगे, तैयार करके गा देंगे। बट मेरे पर्सनालिटी की जहाँ तक बात है, वो मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इन लोगों को

भाई के लिए बहन क्या है और बहन के लिए भाई का मोल कितना है, ये बातें शब्दों में नहीं भावनाओं में बयां की जाती है। भाई को दुनिया की हर सुंदर चीज में अपनी बहन की ही छवि नजर आती है। और बहन, भला दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बहन को अपने भाई से ज्यादा अनमोल लगी हो। प्रेम का ये रूप अनूठा है,

ऐसा भी हो, बिछोह उसके साथ जुड़ा ही होता है। बचपन का ये साथ भी कहां जन भर साथ चलता है। आखिर एक ना एक दिन अपने भाई की नोक झोंक में कही गई बातों को सच करती हुई वो बहन चली ही जाती है परदेश, अपने पिया का घर बसाने। और उसे रोज चिढ़ाता भाई भरी आंखों से देखता ही रह जाता है।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। बचपन की यादों में खोई बहना याद करती है घर की चार दीवारी, अपना आंगन, सखियों की चुहलबाजियां, और इन यादों में मुस्कुराती है तो भर भर आती हैं अखियां भी। कलेजा मुंह को आता है और याद आती है उस खेवैया की, जो ले जा सकता है बचपन की उन गलियों में कभी भी। पुकार लगती है बस उस नाम की।

बचपन की बातों को अपने दिल से लगाए, कभी हंसे तो कभी आंसू बहाए, भेजे संदेश पीहर कभी बादलों के साथ, कभी करे चंदा से अपने वीरे की बात। कौन समझ सकता है एक बहन के मन के हालात, पराए घर में जिसके दिल में बसते हैं अपने।

याद करती हैं तो भूला कहाँ भाई का भी दिल, अपनी इस बहन को। घर में फैली हर ओर उसकी ठिठोली, हंसी खिलखिलाहट की मध्यम होती आवाजें। वो दो चोटी में झूमती नाचती चिढ़ती चिढ़ाती वो, घर की चौखट में पैर धरते ही अब बहाती है आंसू। भाई छेड़ता है और एक बार फिर मुस्कुरा उठती है बहन। यही तो है अरमान उसका, खिली रहे खुशियों की चमक सदा चेहरे पर।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मैं वापस आऊंगा से, आवाज दीपाली सहाय की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म ताल से। आवाजें थी अनुराधा श्रीराम, सुजाता, सोनू निगम और एआर रहमान की। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत एआर रहमान का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से, आवाज विशाल मिश्रा की थी। गीत के बोल अनुराग शर्मा के और संगीत प्रीतम का।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि हर बार की तरह हम इस कार्यक्रम में नए नए विषय लेकर आते हैं, तो आज का विषय है अपेक्षित एवं गौड़ फलों की खेती के उभरते हुए अवसर।
4: बिल्कुल सही कहा आपने मंजीत, और हम लोग अपने कार्यक्रम के दौरान सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं पर भी बात करेंगे, अपने किसान भाइयों को जानकारियां देंगे, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कृषि सलाह, मौसम, बाजार भाव और मनोरंजन की भी बात हम लोग अपने कार्यक्रम के दौरान करेंगे मंजीत।
3: बिल्कुल, तो गौतम, विभिन्न योजनाएं भी भारत सरकार द्वारा बनाई गई हैं और उनमें से एक योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है और इसका उद्देश्य पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन और चारा उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है और पशुओं की नस्ल में सुधार करना है।
4: मंजीत, बहुत सही कहा आपने, ये जो उद्देश्य है इस योजना का, एक तो है कि सब्सिडी भारत सरकार देती है अपने किसान भाइयों को, जिससे उनको लाभ प्रदान होता है। अगर पात्र हैं इस योजना के तो आपको 50% तक सब्सिडी दिया जाता है। और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अगर बात करें तो पशुओं की जो नस्ल है उसमें सुधार करना, मांस अंडा और उनका उत्पादन जो है वो बढ़ाना, चारा का विकास करना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है मंजीत।
3: इस मिशन का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना भी है। इससे युवा और किसान पशुपालन से जुड़े व्यवसाय शुरू करके अपनी आय बढ़ा सकता है। पशुधन की उत्पादकता बढ़ने से दूध, मांस, अंडा और अन्य पशु उत्पादकों का उत्पादन भी बढ़ता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि किसान आधुनिक तकनीक, अच्छी नस्ल और वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाए तो पशुपालन उनकी आय को और मजबूत और साधन भी बना सकता है। अगर विशेषकर हम बात करें राष्ट्रीय पशुधन मिशन की, तो किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और देश के पशुधन क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
4: बिल्कुल सही कहा मंजीत आपने, और जो पशुधन मिशन है हमारा, किसान भाइयों के लिए पशुधन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुधन रखें और पशुधन का पालन करें तो उससे उनका आमदनी दोगुना चौगुना बढ़ सकता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को व्यवसाय में से इनको अपनाना चाहिए, क्योंकि वो पशुओं को अगर अपने साथ रखें, और एक तो आप पशुओं को पालन करेंगे, जैसे आप कृषि के का व्यवसाय करते हैं, साथ साथ उनका जो चारा है वो आपके जो वेस्टेज है उससे भी निकल जाता है, तो आपके खर्च भी कम है और पशु से आपको दूध, घी, मक्खन, जो भी है आप जिस तरह के उत्पाद बनाना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है।
3: बिल्कुल, आम के आम और गुठलियों के दाम
4: जी।
3: तो गौतम, आज हम चर्चा कर रहे हैं अपेक्षित एवं गौड़ फलों की खेती के उभरते हुए अवसर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओपी अवस्थी, अध्यक्ष फल विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली से।
5: डॉक्टर अवस्थी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
6: नमस्कार।
5: तो डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे फल हैं जिनको हमारे किसान भाई या श्रोता नहीं जानते हैं, वो कौन कौन से हैं?
6: देखिए, जैसे कि आपने अभी चर्चा में अपने बताया कि बहुत सारे ऐसे फल हैं, जैसे आम है, अमरूद

0: दूध है, केला है,
1: जी
0: इन फलों को तो सभी लोग जानते हैं, किसान भी जानते हैं अच्छी तरह से, व्यापारी भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जो बिल्कुल शुष्क अवस्था में होते हैं और जिनकी औषधीय गुण जो है बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के रूप में जैसे मैं बताना चाहूंगा, जामुन। जामुन एक ऐसा फल है जो कि आज के समय में उसका अपना विशेष स्थान है। उसी तरह केर है। केर जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है, जहाँ बिल्कुल वर्षा आधारित रहता है ये, और जहाँ पे पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता है वहाँ केर हो सकता है। फिर एक फल होता है लसोड़ा। लसोड़ा जो है वो सब्जी वगैरह बनाने में काम आता है। इसी तरह करौंदा है। करौंदा जो है आजकल बहुत किसान भाई जो है नींबू को काट करके जो है करौंदा की खेती कर रहे हैं। इसी तरह चिरौंजी है। इस तरह से कुछ फलें हैं जो अपना विशेष स्थान रखती हैं और ये औषधीय गुणों से जो है भरपूर होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा कि अगर हम जामुन की बात करें तो जामुन जिस समय आता है तो उसके कहते हैं कि पूरा फल, यहाँ तक कि गुठली भी लोग खाते हैं, क्योंकि इसके लिए जो हमारे मधुमेह के रोगी होते हैं या जिनको मधुमेह की समस्या होती है तो वो लोग इसका ज्यादातर सेवन करते हैं। और इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया लसोड़ा, ये कहाँ पाया जाता है, इसका किस तरीके से उत्पादन करते हैं?
0: जामुन के बारे में तो सभी जानते हैं कि आज जामुन जो कि बिल्कुल पहले जो है कि सड़क किनारे होता था और उस समय कोई किसान उसको लगाते नहीं थे,
1: जी
0: लेकिन आज मधुमेह के रोगियों के बीच में जो है जामुन काफी प्रचलित हो गया है और उस बीज को भी निकाल करके सुखा करके जो है उसका पाउडर बना करके
1: जी
0: जो है डायबिटिक पेशेंट उसको लेते हैं। तो जामुन का तो अपने विशेष महत्व है। और जहां तक लसोड़ा की आप बात करते हैं, लसोड़ा बिल्कुल शुष्क क्षेत्र में, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में, जैसे कि राजस्थान के बीकानेर है या बाड़मेर है या जैसलमेर है, जोधपुर है, और दूसरे आदिवासी क्षेत्रों में जैसे कि गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, वहां पे लसोड़ा बहुत सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। और लसोड़ा का खास महत्व यह है कि इसमें जो है गम, जो गोंद जैसे पदार्थ जो है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो है वो बहुत अधिक होता है और ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसके अचार के साथ साथ जो है इसकी सब्जी बहुत बनाते हैं लोग, तो शुष्क क्षेत्र में जो कि सब्जी की बहुत कमी रहती है तो इसको सब्जी बनाने में प्रयोग लेते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, जो आपने कैर की बात करी, ये जो छोटा छोटा दाना होता है उसी की तो बात कर रहे हैं कि कोई और
0: बिल्कुल,
1: है?
0: नहीं, वही उसी की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि हमारे किसान भाई या कोई दूसरे जो है, अगर कभी अचार खाते हैं, जैसे
1: जी
0: कि बाजार से हम मिक्स अचार खरीद के लाते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि छोटे छोटे जो है वो मटर के दाने का आकार का होता है, उसमें
1: बहुत छोटा
0: बीज जो
1: होता है।
0: है छोटी होती है, अब बीज जो है वो कड़ा होता है, उसका थोड़ा सा बीज होता है उसमें, इसको केर के नाम से जाना जाता है। और केर जो है आज के समय में बहुत ही एक महत्वपूर्ण फल है, इसमें जो है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, ये एंटी कैंसरस होता है और इंडियन मेडिकल जो है IMR जो है उसको पेटेंट भी कर रहा है, और ये कैंसर के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, इसके कैंसर की दवा बनती है। और केर की सबसे खास विशेषता है कि अचार के साथ साथ जो है इसका सब्जी भी बनाते हैं। राजस्थान वगैरह में आप अगर कभी जाइए तो इसकी सब्जी भी बनती है, और इसकी सब्जी आम घरों में ही नहीं वो प्रचलित है, ये जो है 5-स्टार होटल में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और राजस्थान में एक पंचकुटा करके बनाते हैं, तो पंचकुटा में जो है केर को जो है डालना बहुत जरूरी होता है, और ये बड़े बड़े होटल 5-स्टार और शादियों में काफी प्रचलित रहा है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसी तरीके से जैसे अचार का जिक्र किया है, ये करौंदा भी तो झाड़ियों की तरह लगता है, इसमें छोटे छोटे होते हैं और इसका भी अचार डालते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, इसमें जो है करौंदा, देखिए क्या हो रहा है आजकल, नींबू में बहुत सारी समस्या आ रही है। नींबू में क्या हो रहा है कि अचानक पेड़ सूखने लगा है, तो किसान क्या कर रहा है कि इस समय जो है नींबू को काट करके जो पौधे सूख गए हैं उसमें वो करौंदा लगा रहे हैं। अब देखिए करौंदा के बहुत सारे फायदे हैं, एक तो ये बहुत अच्छी झाड़ी बनती है इसकी, मतलब ये जानवरों से आप बचाव कर सकते हैं, इसको बाउंड्री में किसान भाई इसको लगा सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि जानवरों से तो बचाव होगा ही होगा।
1: जी
0: अब जो जो इसमें फल आते हैं वो दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तो इसका अचार बहुत अच्छा बनता है, अब दूसरा आजकल इसकी जली बन रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे किस्म आ गए हैं जो बिल्कुल रंगीन होते हैं, जैसे कि मैरून रेड है या थार है, पंच सुजाता है, पंच सुवर्णा है, पंच शिवानी है, कई ऐसे किस्में हैं जो बिल्कुल के गूदा जो है बिल्कुल गाढ़े लाल रंग का होता है, उससे जली जो बनती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होता है।
1: एक तो करौंदे का फायदा जो हमारे बागवान भाई हैं, अगर कहीं भी बागीचे लगाते हैं फलों के, तो उसके आसपास अगर उसको बाउंड्री के तौर पे लगाएं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एक तो सुरक्षा होगी, दूसरे आपको इससे मिलने वाली फलस से आपको इनकम भी होगी।
0: और एक इसका और महत्व है
1: जी
0: कि करौंदा की जो पत्तियां गिरती हैं, आप जहाँ भी करौंदा लगा रहता है उसमें मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे कि आप दूसरे फल वृक्ष लगाते हैं, आम लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, उसकी पतझड़ होती है, उससे जितना ऑर्गेनिक कार्बन जाता है उससे कई दोगुना या तीन गुना अधिक जो है ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये करौंदा की पत्तियों से जो है मृदा में मिलती है उसको।
1: मतलब जो हमारे मृदा की संरचना में भी बदलाव होता है, उसके ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपने जिक्र किया था एक फल जो फालसा होता है, ये कहाँ होता है, इसका क्या महत्व है?
0: देखिए, फालसा जो है बिल्कुल झाड़ी नुमा होता है और ये मई में जो है पक करके तैयार हो जाता है। अब फालसा का सबसे, चूंकि आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, महिलाओं के लिए जो है ये बहुत ही उपयोगी फल है, क्योंकि उनकी हीमोग्लोबिन की समस्या होती है, तो अगर ये फालसा का जूस पीते हैं तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन की कंटेंट उनके उसमें बढ़ जाता है। अब फालसा जो है झाड़ी नुमा होता है, बस फालसा में एक ध्यान देना चाहिए कि जो भी किसान भाई अगर फालसा लगाते हैं तो उसमें जो है कटाई छटाई करना बहुत जरूरी होता है, और दिल्ली में इसकी कीमत करीब 150 से 200 रुपए किलो इस समय जो है रहता है गर्मियों के दिनों में।
1: तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये कहीं कहीं मैंने सुना है कि ये अपना नागफनी है, इसका भी फलों में ही बड़ा महत्व है।
0: आजकल देखिए, बिल्कुल शुष्क क्षेत्र में जहाँ बिल्कुल जो है पानी की बहुत समस्या है या पानी नहीं मिल पाती है, आजकल शुष्क क्षेत्रों में जो है नागफनी की खेती करते हैं लोग। तो नागफनी में लोग सोच करके बहुत वो लगता है कि नागफनी से क्या फायदा होता होगा, उसमें तो कांटे ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नागफनी में जो छोटे छोटे उसमें फल लगते हैं तो उसको जो है
1: फूल जैसा दिखाई देता है,
0: फूल जैसा दिखाई देता है, उसको निकाल करके जो है 5-स्टार होटल में या जो होटल्स में होते हैं वहां सप्लाई करते हैं, इससे जो है किसान भाई काफी अधिक आमदनी ले रहे हैं।
1: देश में भी और विदेशों में भी इसकी मांग है सर?
0: हाँ, विदेशों में, खास करके मैक्सिको में, मैक्सिको में बहुत सारी अच्छी उन्नत किस्में भी वो विकसित की गई हैं, और मैक्सिको से बहुत सारी किस्म हमारे भारत में भी जो है लाई गई हैं, उनकी खेती जो है रेगिस्तान के ये बीकानेर या जोधपुर या जयपुर के इलाके में काफी कर रहे हैं आजकल।
1: डॉक्टर साहब, कहते हैं जलेबी तो लोगों ने खाई है, लेकिन एक नाम है जंगल जलेबी, तो ये भी कहीं कहीं पाया जाता है और इसकी भी मांग रहती है, इसका क्या महत्व है?
0: देखिए, जंगल जलेबी कभी हम लोग बचपन में जो है उसको जाते थे तो होता था, तो उसको तोड़ करके खा लेते थे। उस समय ये मालूम नहीं था कि जंगल जलेबी आज के समय में इतना महत्वपूर्ण फल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो लोग कहते हैं कि जैसे कि आंवला में जो है विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो आंवला के बाद जो है ये सब फल हैं जैसे कि जंगल जलेबी है या मकोई है, इसमें जो है विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, और इसे लेने पे जो है एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है।
1: जी, आपने मकोई का भी जिक्र कर दिया डॉक्टर साहब। एक शहतूत भी होता है, इसके भी छोटे छोटे फल हैं होते हैं, उनकी भी मांग रहती है।
0: हाँ, शहतूत, देखिए शहतूत जो है ऐसे ही पेड़ होता है, गर्मी में इस समय जो है शहतूत काफी उपलब्ध है पूरा जो है, इसमें आयरन ज्यादा होता है, विटामिन सी ज्यादा होती है, और उसके बाद में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होता है। और आजकल जो आ रही हैं किस्में आ रही हैं कुछ शहतूत के, वो बहुत अच्छी अच्छी किस्में आ रही हैं जिसमें कि एक फ्रेग्रेंस भी होता है, उसको कर सकते हैं, और इसके साथ शहतूत के साथ साथ जो है इसका सिल्क में भी बनाने के काम आता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं फलों की, अब एक आता है कि चिरौंजी, जिसको हम मसालों में भी प्रयोग करते हैं, और उसको गिनती फलों में कैसे होती है?
0: चिरौंजी देखिए, ये जो है जैसे कि काजू को हम कहते हैं
1: जी,
0: काजू है या अखरोट है, ये सब जो है उसमें फलों में ही गिनते हैं।
1: तो
0: चिरौंजी भी जो है एक ड्राई फ्रूट के लिए है। चिरौंजी आमतौर पर ये जो आदिवासी क्षेत्र जहाँ पे है
1: जी,
0: वहाँ पे जो है जंगल के बीच में ये खड़े रहते हैं, इसकी खेती बहुत प्रचलित नहीं है क्योंकि अभी कोई अच्छी किस्में विकसित नहीं हुई है, एकाक दो है, CT10 है और CT8 है जो विकसित की गई है। तो इसमें क्या काम करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या चिरौंजी के साथ है कि चिरौंजी कोई लगाता नहीं है, खास करके आदिवासी क्षेत्र में ये पेड़ खड़े रहते हैं और उसको आदिवासी भाई अपने जो है उसको काट लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे फल
1: जी,
0: तो उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब तुड़ाई करने के बाद जो है उसको बाजार में ला करके उसको बेचते हैं, और ये ना आमतौर पर कि खीर वगैरह जो बनाते हैं
1: जी,
0: उसमें
1: जी,
0: ये डालने के काम आता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और करीब इस समय जो है करीब 150 से 200 रुपए किलो के रेट से ये बिकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो अपरिचित फल हैं, इनको बढ़ाने के लिए हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्या कुछ नई किस्मों का विकास कर रहा है, कुछ इस पे काम हो रहा है?
0: हाँ, देखिए, जो अप्रचलित फल हैं या जो कम लोग जानते हैं इसके बारे में, इसके लिए जो है भारतीय कृषि अनुसंधान ने पूरा एक इंस्टीट्यूट दिया है जो कि केंद्रीय शुष्क बागवानी के संस्थान के नाम से बीकानेर में स्थापित है, और ये जो है इसी फसलों पे काम करते हैं। केर है, करौंदा है, लसोड़ा है, बेल है, आंवला है, जामुन है, तो इसमें बहुत सारी किस्में विकसित हुई हैं। खास करके अगर जामुन की बात करें तो जामुन में बहुत सारी अच्छी किस्में हैं, जैसे गोमा प्रियंका है, थार क्रांति है, ये राजेंद्र

0: मुन है, उसके बाद वहाँ जामवंत तो विकसित की गई है लखनऊ से जो है, ये सब बड़े अच्छे किस्म हैं जामुन के, जो कि बिल्कुल गूदा बहुत ज्यादा होता है और बीज की मात्रा कम होती है। उसी तरह अगर आप करौंदा की बात करें तो करौंदा में भी कुछ किस्में विकसित की गई हैं, जैसे कि पूसा पंत सुदर्शन है, शिवानी है, मैरून रेड है। अभी काजरी जोधपुर से थार मरु कर करके एक किस्म है जो विकसित की गई है करौंदा की, सी जेट के 2011 है, 2022 है, 2031 है, तो इन फसलों में तो काफी अच्छी प्रगति हुई है। उसी तरह मलबरी जो शहतूत की आप बात कर, शहतूत में भी कुछ अच्छे किस्म है, लेकिन कुछ ऐसे फसल है जैसे कि केर के बारे में, तो केर में अभी भी जो है कोई विकसित किस्म नहीं है। इसमें केवल आप जाइए कभी राजस्थान या दूसरे इलाके में जाइए जहां ये होता है केर, तो आपको केवल दो टाइप के मिलेंगे उसमें, एक जो है बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो छोटे वाले की कीमत जो है वो ज्यादा होती है बड़े वाले की अपेक्षा से, क्योंकि उसकी सब्जी वगैरह बहुत स्वादिष्ट बनती है और बड़े वाले में बीज चूंकि बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए उसमें वो कम प्रचलित है। लेकिन किस्मों के नाम पे वो इसी नाम से जानते हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला। इसी तरह गूंदा में, जिसको कि हम लसोड़ा भी कहते हैं, तो लसोड़ा में एक अभी किस्म विकसित की गई है केंद्र शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर से, ये थार बोल्ड करके है, बहुत अच्छी किस्म है वो, और वो दोनों सब्जी और अचार बनाने के काम में।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें बहुत से फल हैं जिनको तो संरक्षित करने की क्षमता होती है, लेकिन एक जामुन ऐसा फल है कि बहुत जल्दी खराब होता है। क्या कुछ आपके वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं कि इसको थोड़ा ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जाए और ज्यादा दिन तक इसके चाहने वाले प्रयोग कर सके?
0: आपने सही कहा कि जो है तुरंत तोड़ने के बाद जो है उसको तुरंत बाजार भेजना पड़ता है, नहीं तो जो है वो खराब हो जाता है।
1: जी
0: आजकल इसकी पल्प निकाल करके बिल्कुल डीप फ्रीजिंग कर दे रहे हैं, और इसी तरह इसका जो है जूस भी बनता है, कुछ लोग स्क्वैश भी बनाते हैं, कुछ लोग इसका जाम भी इसकी जो है उससे बना लेते हैं।
1: जी डॉक्टर ओपी अवस्थी जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जो हमारे अपरिचित फल हैं उनके बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो गौतम, इस कार्यक्रम में जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी करवाते हैं, तो सावन चल रहा है और सुनवाते हैं सावन का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सावन का गीत।
1: तो गौतम, बात कर लेते हैं मौसम के हाल की। तो कल का मौसम कैसा रहने वाला है? तापमान लगभग 28 सेल्सियस से 37 सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना कम दिख रही है। दोपहर में गर्मी और उमस महसूस हो सकती है।
0: मंजीत, हम लोग अपने कार्यक्रम में मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह देते हैं अपने किसान भाइयों को। अगर किसान भाई स्वीट कॉर्न, जिसको कि माधुरी या बेबी कॉर्न भी आप बोल सकते हैं, उनकी अगर बुआई करनी हो तो आप मेड़ों पर करें।
1: और इस मौसम में किसानों को सलाह है कि फूलगोभी की पूसा शरद, पूसा हाइब्रिड 2, पंत शुभ्रा की रुपाई हेतु पौध तैयार करना शुरू करें। खरीफ प्याज की तैयार पौध की रुपाई मेड़ों, उथली क्यारियों पर ही करें।
0: अगर वही किसान भाई अगर कद्दू बरगी एवं अन्य सब्जियां हैं अगर किसान भाई उगाते हैं, तो उसमें एक चीज उनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनमें मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है। वे परागण में सहायता करती हैं, इसलिए जितना संभव हो सके मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें, कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें और कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें।
1: और इस मौसम में किसानों को सलाह है कि यदि टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी व पत्ता गोभी की पौध तैयार है तो रुपाई मेड़ों यानी कि उथली क्यारियों पर ही करें। तो गौतम, अब हम बात करते हैं आजादपुर मंडी के फल एवं सब्जियों के ताजा भाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आलू की। तो आलू है 15 से 18 रुपए प्रति किलो। वहीं प्याज की बात करें तो 25 से 35 रुपए प्रति किलो। टमाटर 25 से 35 और बीन्स की बात करें तो 30 से 60 रुपए प्रति किलो। और बैंगन इस समय 15 से 25 रुपए प्रति किलो है।
0: बिल्कुल मंजीत, आपने सब्जियों की बात की और फल भी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और केला अगर बात करें तो 20 से 25 रुपए प्रति किलो, सेब की बात करें तो 150 से 180 रुपए प्रति किलो, और अमरूद की बात करें तो 80 से 100 रुपए प्रति किलो, मौसमी 30 से 40 रुपए प्रति किलो, और पपीते की बात करें तो 30 से 40 रुपए प्रति किलो। किसान भाइयों, हम अभी आपके साथ फल और सब्जियों के भाव साझा कर रहे थे जो कि हमें आजादपुर मंडी से प्राप्त होते हैं। और आपको कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी सुझाव और प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
1: और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
0: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: Nasimang Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ni Rapaingapa sponsor program Kisan Vani ni Chiginik Babakok Nasora Manaha Tao Chet Pajongahan Nasimang Delhi Station ko Hindi Kubarang Kok Nasogen Unijak Mano Jol Jol Chet Paji Mit Pau Nasimang English Kubarang Koba Knagen Yan Akashvani Tura
1: Namaskar Akashvani Samachar Kisat Me Sir Firozi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर आज उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा है। उनके स्वागत में पूरे ताशकंद शहर को भारतीय झंडों और स्वागत संदेशों से सजाया गया है।

0: दोनों नेता कल राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के क्षेत्रों में सहयोग पर भी विचार विमर्श होगा। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में आई बाढ़ के बाद अभी तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के राष्ट्रीयता रखने वाले भारतीय मूल के तकरीबन 128 लोग भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि रासुआ में जल विद्युत परियोजना से आज 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। इसके अलावा आज चीन से 120 भारतीय नागरिक नेपाल आ गए। मंत्रालय ने कहा कि भारत से 6 फॉरेंसिक विशेषज्ञों के आज काठमांडू पहुंचने की संभावना है। ये विशेषज्ञ मृतकों की पहचान के लिए डीएनए नमूनों की जांच में मदद करेंगे। सुरंग बचाव अभियान में मदद करने के लिए कल एक विशेषज्ञ तकनीकी दल काठमांडू पहुंच गया। इसके अलावा संबंधित उपकरणों से सुसज्जित सुरंग बचाव अभियान दल के आज काठमांडू पहुंचने की संभावना है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
1: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi reached Tashkent, capital of Uzbekistan, on his two-day visit to the Central Asian country this evening. The Prime Minister was welcomed by the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance. The entire Tashkent city is adorned with Indian flags and hoardings as the country anxiously awaited the fourth visit by PM Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people domains at the Presidential Palace. The government has said that more than 115 lakh hectares of farmland have been brought under micro-irrigation under the Per Drop More Crop scheme as of July this year. The initiative aims to promote efficient use of water at the farm level and improve water use efficiency in agriculture. The initiative began in January 2006 as a centrally sponsored scheme for micro-irrigation. From 2015-16 to 2021-22, it was officially named Per Drop More Crop and implemented as a core component of the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Under this scheme, the government provides financial assistance of up to 5 hectares per beneficiary to install micro-irrigation systems. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669, with over 2,000 people remaining missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said that police are coordinating with the residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. The External Affairs Ministry has said that 88 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy on Wednesday. In a social media post, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that 287 Indian nationals are reportedly missing. He said around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. Mr. Jaiswal informed that 4 Indian nationals were rescued today from a hydropower project in Rasuwa. He added that 120 Indian nationals crossed into Nepal from China today. The ministry said 6 forensic expert teams from India are expected to reach Kathmandu today to assist in analysis of DNA samples for identification of mortal remains. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is concerned about the crisis situation in Nepal. Talking to reporters in Lucknow, Mr. Singh said that Prime Minister Narendra Modi has stated that India is ready to provide all the assistance needed by Nepal. The Defence Minister added that India has been continuously sending assistance to the neighbouring country. Nepal President Ram Chandra Podel today expressed gratitude to his Indian counterpart Draupadi Murmu for her concern and the support extended by the government of India following the devastating flash floods in Nepal. Nepal praised India's efforts towards helping it in times of crisis and described Prime Minister Narendra Modi as exceptionally generous in the wake of the devastating flood in the country. At least 37 people have been killed following a Russian attack on the Bucha district close to the Ukrainian capital of Kyiv, officials said today. According to head of the local regional military administration, at least 50 residential buildings had been damaged in the attack. In women's cricket, India will begin their T20 Asia Cup campaign against Thailand tomorrow at Dubai International Cricket Stadium. The match is scheduled to start at 8:30 p.m. IST. Harmanpreet Kaur will lead India with Smriti Mandhana as vice-captain. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और मेरे साथ हैं विशेष शुक्ला। आज स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बात होगी खेल के मैदान की उन तमाम उपलब्धियों की जिन्होंने देश के भीतर से लेकर

0: सात समंदर पार तक भारत को गौरवान्वित किया।
1: इसके साथ ही कार्यक्रम में आज बताएंगे हॉकी के उस जादूगर मेजर ध्यानचंद की कहानी, जिसने भारत में खेलों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
0: कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी उन तमाम पहलों की, उन लक्ष्यों की जो प्रतिबद्ध है भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष ये दिवस 29 अगस्त को दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत पूरे देश भर ने आज इस महानुभूति को याद किया है। भारतीय हॉकी मेजर ध्यानचंद के बिना अधूरी है। देश भर में आज दिग्गज हॉकी खिलाड़ी और पद्म भूषण से अलंकृत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत की समृद्ध खेल विरासत का उत्सव मनाने का प्रतीक है।
1: मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले चैंपियन खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जब मैदान पर खेलते थे तो ऐसा लगता था कि गेंद उनकी स्टिक से किसी चुंबक की तरह चिपक गई हो। ऐसा कहा जाता है कि हॉकी के इस जादूगर की कलाइयों की जादूगरी देखकर एक दफा हिटलर तक ने उन्हें जर्मनी से खेलने तक का ऑफर दिया था। 29 अगस्त 1905 को तत्कालीन इलाहाबाद में जन्मे ध्यान सिंह का बचपन से ही झुकाव हॉकी के प्रति रहा। पिता ब्रिटिश सेना में थे और आसपास के माहौल ने ध्यान सिंह के शौक को जुनून में तब्दील कर दिया। महज 16 वर्ष की उम्र में वो सिपाही के तौर पर सेना से जुड़े और यहीं से शुरुआत हुई विश्व के महानतम खिलाड़ी की कहानी की। हॉकी से लगाव ऐसा कि वे दिन में सेना की नौकरी करते और रात को दूधिया रोशनी में मैदान पर अभ्यास। जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, ध्यान सिंह ध्यानचंद बनते चले गए। सेना में अपनी सेवाएं देने के दौरान ध्यानचंद ने रेजिमेंटल मैच खेलने शुरू किए। वर्ष 1922 से लेकर 1926 के बीच ध्यानचंद ने अपने खेल से हर किसी को प्रभावित किया और आखिरकार भारतीय हॉकी टीम की जर्सी में इस उभरती प्रतिभा को न्यूजीलैंड दौरे के लिए मौका दे ही दिया। ध्यानचंद आज से 100 वर्ष पहले जब न्यूजीलैंड के मैदान पर उतरे तो उनकी हॉकी स्टिक के करतब बता रहे थे। ना जाने कितने दिनों से ध्यानचंद इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय सेना ने न्यूजीलैंड में 18 मैच जीते और सिर्फ एक ही मुकाबले में हार का सामना किया और इस ऐतिहासिक प्रदर्शन का श्रेय जाता है ध्यानचंद के जादुई खेल को। भारतीय हॉकी महासंघ ने 1928 ओलंपिक के लिए जब टीम भेजने का निर्णय लिया तो ध्यानचंद को ट्रायल के लिए बुलाया गया। ओलंपिक में ध्यानचंद ने 5 मुकाबलों में शानदार 14 गोल दागे और टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। वो ध्यानचंद का खेल ही था कि भारतीय टीम पूरा टूर्नामेंट में अजय रही और स्वर्ण पदक जीतकर स्वदेश लौटी। विश्व स्तर पर ध्यानचंद के खेल की चर्चा होने लगी। वर्ष 1932 और 1936 के ओलंपिक में भी ध्यानचंद ने अपने खेल के करिश्मे से हर किसी को दीवाना बना दिया और भारत को दोनों मौकों पर स्वर्ण पदक जिताया। ध्यानचंद ने अपने जादुई खेल की बदौलत इस पूरे काल को भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग बना दिया। टीम के साथ मैदान पर अटूट समर्पण, संतुलन ऐसा कि मैदान पर कोई अभेदय किला बन जाए और हॉकी स्टिक से वो जादूगरी कि ध्यानचंद के पास आई गेंद सिर्फ गोल पोस्ट पर जाकर रुके। इसी दौरान वर्ष 1936 के ओलंपिक में भारत और जर्मनी का मुकाबला आज भी किस्सों कहानियों में अमर है। मैच में ध्यानचंद ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल दागे और भारत ने जर्मनी को 8-1 से रौंद दिया। कहा जाता है कि उस दिन स्टेडियम का आलम ये था कि बीच मुकाबले में ही अपनी टीम को हारता देख हिटलर स्टेडियम छोड़कर चले गए। इसके बाद हिटलर ने ध्यानचंद को बुलाया और उन्हें अपनी सेना में बड़ा पद ऑफर करते हुए जर्मनी से खेलने को कहा। हालांकि जो ऐसे प्रलोभनों में आ जाए वो ध्यानचंद कैसा। ध्यानचंद ने भारत को 34 साल तक सेवाएं दी और लेफ्टिनेंट के तौर पर रिटायर हुए। 22 वर्षों के करियर में ध्यानचंद ने भारत के लिए 400 गोल किए। 3 दिसंबर 1979 को ध्यानचंद कैंसर से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन आज भी ये खिलाड़ी किसी भी खेल के मैदान पर सैकड़ों खिलाड़ियों की जीत का आदर्श है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो देश आज याद कर रहा है अपने इस चैंपियन खिलाड़ी को। श्रोताओं, खेल सिर्फ मैदान पर बढ़त बनाना या जीत की बाजी नहीं है, इसके पीछे छुपे होते हैं सैकड़ों अनचाही हार के अनुभव। मैदान पर गिरकर उठने का जज्बा, न जाने कितनी चोटों के दर्द जिन सब पर पार पाकर एक खिलाड़ी मुकाबले में जीत हासिल करता है। ये वो जीतें हैं जो इतिहास के पन्नों में एक बार लिखी जाती हैं तो वापस कभी कोई इन्हें मिटा नहीं सकता। बर्लिन में ध्यानचंद का करिश्मा तो आपने सुना, जिस यात्रा में ऐसे कई पड़ाव रोज जुड़ते हैं, जहां 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ता फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पोडियम पर पहुंचने से चूक जाता है। 1975 का हॉकी विश्व कप जहां चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर भारत की जीत ऐतिहासिक बन जाती है। 1983 में काली सफेद टीवी स्क्रीन पर हिंदुस्तान अपने हीरो कपिल देव को पहली बार क्रिकेट विश्व कप उठाते हुए देखता है तो कहीं कोई अंजू बॉबी जॉर्ज, कोई पीटी उषा सैकड़ों लड़कियों का आदर्श बन जाती है।
2: 16 साल का लड़का एक बार क्रिकेट के रिकॉर्ड को ध्वस्त करता है तो 100 शतक लगाकर भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर बन जाता है। विश्वनाथ आनंद की चेस की बाजियों से लेकर सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, भाईचंद भूटिया, सुनील छेत्री, राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र सिंह और फोगाट परिवार, न जाने कितने ऐसे नाम दुनिया को बताते हैं कि कुश्ती की मिट्टी से लेकर हॉकी के टर्फ तक आज भारत का हर खेल खेल के लिए तैयार है।
3: सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने टीम में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और यह खेल खत्म, भारत को 1-1 जीत गया।
4: And that's out. Yes, it's all over this time. The 40 all out West Indies. India race into the pavilion with the Prudential Cup players.
5: Silver medal representing India, Rayabharachan Sinrator.
6: In the air, Srijan takes it. India win. Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room.
7: Pehla gold medal Bharat ke naam athletics mein Olympic Games ke andar aur wo aaya hai Tokyo 2020 mein.
8: Match point. Gold medal PV Sindhu ke naam aur ye hai inke career ka pehla Commonwealth Games women's singles gold medal.
9: Go back to the javelin and Sumit with his second throw after a 69-11.
10: Another goal. Preeminent athlete in this event, the men's javelin. In Tokyo, he's repeated the feat here in Paris.
11: No!
12: Yes, sahi hai.
11: Art!
12: Yes, sahi hai, Guru!
11: Chay! Paanch! Terma! Olympic medal!
12: Aur isi ke saath hi hai, Bharat ke liye bronze medal.
13: Made a winning lift attempt. Much better.
0: वो तमाम लम्हे जो हम वापस जब भी सुनते हैं तो गौरवान्वित होते हैं। खेलों का एक बहुत सीधा और सटीक गणित है कि चैंपियन एक दिन में नहीं बना करते।
2: देश में बीते कुछ वर्षों में शासन प्रशासन की तरफ से विश्वास की नई राह दिखी है। केंद्र सरकार की टॉप योजना हो या खेलो इंडिया का मंच या फिट इंडिया की मुहिम, भारत एक खेलों की नई नर्सरी के रूप में तैयार हो रहा है।
0: आपकी जीत पर आपकी पीठ सैकड़ों लोग थपथपाते हैं, लेकिन ये विश्वास तब परिभाषित होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 क्रिकेट विश्व कप की हार के बाद अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने पहुंच जाते हैं उनके ड्रेसिंग रूम। लक्ष्य स्पष्ट है, सरकार प्रतिबद्ध है देश को खेलों की महाशक्ति बनाने के लिए।
2: सिर्फ प्रतिभाग तक नहीं, भारत अब आयोजनों का नया मंच बन रहा है। 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो भारत की ओलंपिक मेजबानी की राह मजबूत कर रहा है।
0: तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहते हैं, जो खेलेगा वो खिलेगा।
14: स्पोर्ट्स में कोई लूजर नहीं होता, स्पोर्ट्स में सिर्फ विनर्स और लर्नर्स होते हैं। स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल, स्पिरिट यूनिवर्सल। स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है।
15: देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर।
16: मैं देख रहा हूँ मेरे देश का युवा मन अब सर्वश्रेष्ठ की तरफ अपने आप को केंद्रित कर रहा है।
0: तो ये तो थे प्रधानमंत्री के विचार, और आज हम जानेंगे कि हमारी आज की ये युवा पीढ़ी क्या सोचती है खेल को लेकर, उसके अनुभव कैसे हैं।

0: Sports for me is fun.
1: Sports for me is like a secret for fitness.
2: खेल मेरे लिए स्कूल का यादगार दिन, जो हम क्लासेस बंक करके खेलते थे और खेलों में बहुत खुशी मिलती है.
3: खेल का मतलब मेरे लिए वो खूबसूरत पल हैं जो मैंने अपनों के साथ बिताए, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हो या फिर मेरे पेरेंट्स हो. जब मैंने उनके साथ बैडमिंटन खेला या वो डॉज बॉल खेला या वॉलीबॉल खेला, तो उस समय जब मैं खेलने के टाइम जो मेरे को रिफ्रेश फील होता था या फिर मेंटली फ्री फील करती थी मैं, सब चीजें भूल जाना, वो मेरे लिए सबसे स्पेशल रहेगा.
4: खेल मेरे लिए मेरे बचपन का वो हिस्सा है जो मैंने अनजाने में जिया है.
5: स्पोर्ट्स फॉर मी इज रोहित शर्मा, अ सिंबल ऑफ कामनेस, एक्सीलेंस एंड लीडरशिप, जर्सी नंबर 45.
4: खेल मेरे लिए मेरे जीवन का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मैंने बचपन में जिया है, जो मुझे खुशी देता है, जो मुझे सुकून देता है.
6: स्पोर्ट्स इंप्रूव्स फिजिकल हेल्थ, शार्पन्स द माइंड, इट बिल्ड्स फिटनेस, रिड्यूसेस स्ट्रेस, इंप्रूव्स फोकस एंड बूस्ट्स कॉन्फिडेंस, इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ.
7: तो सबके अपने किस्से हैं, सबकी अपनी यादें हैं. राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.
8: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है. इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव. इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है. इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला. मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया.
9: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है. मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा.
8: सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है. खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है. सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
7: चाहे ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल हो या विश्व का कोई बड़ा खेल आयोजन, पोडियम पर राष्ट्रगान के साथ लहराता तिरंगा हर तस्वीर में कहानी बयां करता है. उन संघर्षों की, अभ्यासों की, जो शायद कभी दुनिया के सामने नहीं आते. हर खिलाड़ी मैदान पर उतना ही होता है जितना घड़ी की सुइयों में बंधे मुकाबलों के स्कोरबोर्ड में नजर नहीं आ सके. खेल हमें मैदान से इतर बहुत कुछ सिखाते हैं. अब कार्यक्रम में अंत में आज की कुछ खबरों की भी बात कर ली जाए तो विशेष क्या है आपके पास?
10: भारत के लिए खुशखबरी आई है हंगरी से, जहां आयोजित पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन फाइनल में भारत के वेलविन सेंथिल कुमार ने घरेलू दावेदार बलाज फाकर्स को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया. हालांकि एशियन गेम्स से ठीक पहले भारत की पदक की उम्मीदों को झटका भी लगा है, जहां 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा घुटने की चोट के कारण एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं. नीरज चोपड़ा ने आज घोषणा की कि अभ्यास के दौरान चोट लगने के कारण वह एशियाई खेलों के साथ साथ 2026 के बाकी सत्र में नहीं खेल पाएंगे.
7: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक पदक का नुकसान हुआ, साथ ही वो तमाम खेल प्रेमी जो नीरज को देखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर. और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का. आज का विशेषांक आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव आप हमें sportscan की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं. तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार.
11: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे. नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई. 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अभी

0: लापता नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
4: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता हो

0: व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
2: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
3: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने B.R. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म वार से, आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल और शेखर का।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।

0: आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम तो बहुत छोटा ही है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत समझना।
2: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह अच्छा शेर है, बैठो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है, दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम फिर कड़ी नजर रखे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं तुझे चाहूंगा। नहीं
3: लीना, एक अब भी मैं लेके कहा था, तू कहा थी अब तक?
1: घर पर ही थी और कहा थी।
2: नेमरा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अरे अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उनकी गाड़ी में आएंगी, मुझे अकल मत सिखाओ।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
3: अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे है, उस दिन लड़ोगे?
1: आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
3: हाँ हाँ।

सुधा चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

फिल्म मन का मीत की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मीत को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम जोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे एक बोझा था, वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहां मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं तो
1: अब कोई फायदा नहीं राम।

0: जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम टाइप के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने वाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो नहीं आप बोलिए ना, ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। उस जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर और मस्ती मजाक भी करते थे। वो मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है, ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुट ही बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग। तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में मेरे

सन 1971 में हास्य अभिनेता महमूद की फिल्म आई मैं सुंदर हूँ। इस फिल्म के जरिए लीना ने अपने चाहने वालों से कहा,

फिल्म मंचली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली

0: फिल्म सन 1974 में विदाई फिल्म के साथ ही लीना चंदावरकर ने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ वांदोड़कर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूर होकर लीना चंदावरकर को दोबारा फिल्मी दुनिया में आना पड़ा।
1: ओ जिंदगी है कभी खुशी है कभी।

0: खुशी है कभी गम।
1: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
2: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ
3: हम। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शबकत मिर्जी योयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
4: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
3: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जपारोफ के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम तेजी से जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिक

0: को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालिक निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधारों से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगे और तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र ओडिशा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तूफान के आसार जताए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप में 5वें स्थान पर रहने के लिए भारतीय महिला टीम को 50 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। भारत ने बृहस्पतिवार को एम्स्टर्डम में जर्मनी को 3-1 से हराया था। वर्ष 1974 में पहले विश्व कप में 4थे स्थान पर रहने के बाद यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में केवल 1 मैच गंवाया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a 2-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. The two leaders are scheduled to hold detailed discussions on the entire gamut of bilateral relations and review progress in key areas of cooperation. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his 4th visit to the Central Asian country.
2: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit the Shastri Memorial in Tashkent and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Tashkent, Uzbekistan.
1: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669, with over 2,000 people missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods. Defence Minister Rajnath Singh today said India is concerned about the crisis situation in Nepal. Talking to reporters in Lucknow, Mr. Singh said India has been continuously sending assistance to the neighbouring country. The External Affairs Ministry has said 88 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy on Wednesday. In a social media post, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said 287 Indian nationals are reportedly missing. He said around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. Mr. Jaiswal informed that four Indian nationals were rescued today from a hydropower project in Rasuwa. He added that 120 Indian nationals crossed into Nepal from China today. Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman said today that as global companies reassess their supply chains and capital allocation, India offers not only the scale of a vast market, but also the depth of a long-term investment and operating platform. She made these remarks while addressing a high-level business roundtable with leading investors and business leaders in Chicago in the United States. She highlighted India's broad-based growth, reform momentum, and expanding opportunities for long-term investment. Ms. Sitharaman also emphasized that India's investment appeal lies in the convergence of scale, sustained economic growth, skilled talent, world-class infrastructure, technological advancement, and a decade of consistent reforms. The government has said more than 115 lakh hectares of farmland have been brought under micro-irrigation under the Per Drop More Crop Scheme as of July this year. The initiative aims to promote efficient use of water at the farm level and improve water use efficiency in agriculture. The initiative began in January 2006 as the centrally sponsored scheme for micro-irrigation. From 2015-16 to 2021-22, it was officially named Per Drop More Crop and implemented as a core component of the Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana. Under this scheme, the government provides financial assistance of up to 5 hectares per beneficiary to install micro-irrigation systems. Small and marginal farmers receive 55% and other farmers receive 45% financial assistance. And with that, we end this news bulletin.

एक अजनबी दास्तां की तलाश है, एक नए अफसाने को दिल ढूंढ रहा है, दिल की राहों में एक नया सपना है, हर पल में छुपी एक कहानी है।

जिंदगी से मुलाकात एक पल की बात, दिल से दिल की बात जिंदगी भर का साथ। दिल की गहराइयों में एक नई रोशनी छाई है, तुमसे रात मुलाकात क्या हुई, जिंदगी मुस्कुराई है।

0: एक बात कहूं, चेहरा रूप रंग हर अदा है रूखी रूखी, जब तक ना हो इसमें इश्क की चमक, रहेगी जिंदगी सूखी सूखी। गुस्ताखी माफ।
1: चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं।